एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे।

0: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

भक्ति का मार्ग अहंकार का नहीं बल्कि समर्पण और विनम्रता का मार्ग है। वास्तव में भक्ति और नम्रता का संबंध वैसा ही है जैसा शरीर और प्राण का होता है। बिना नम्रता के भक्ति मात्र एक ढोंग बनकर रह जाती है। भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, स्वयं को ईश्वर के श्री चरणों में सौंप देना। नम्रता अहंकार रूपी दोष को कम कर देती है। नम्रता के आते ही मनुष्य के भीतर क्षमा, दया, संतोष और धैर्य जैसे अन्य दिव्य गुण अपने आप प्रवेश करने लगते हैं। एक विनम्र भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी को अपने से छोटा समझता है। वह हर जीव में ईश्वर का ही रूप देखता है। चिंतन के बाद श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति और श्रद्धा के इस पवित्र संगम में अब हम उस आदि अनादि अनंत और परम ब्रह्मा की आराधना की ओर बढ़ते हैं, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। जटाओं में गंगा को धारण करने वाले और नीलकंठ कहलाने वाले भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है।

सब पर कृपा बरसाने वाले, सबकी झोलियां भरने वाले शिरडी के दाता साईं बाबा के चरणों में हमारा सत सत नमन है। ईश्वर की आराधना का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर मार्ग की मंजिल उस एक ही शक्ति तक पहुंचती है।

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ

आरंभ हुए तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनेगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह गाने सुहाने। 9:00 सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। और आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन रहेगा। इसी कार्यक्रम के बीच में सुबह 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। और 11:05 पर आज आप सुनेंगे पंजाबी गीत, कार्यक्रम होगा महक पंजाब दी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। दोपहर 12:30 पर आज बहनें सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा। दोपहर

एक बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और 1:10 से लेकर शाम 5 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी भजन। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच। 6 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और 6:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा ग्राइंदियां, यह कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और शाम 7:10 पर सुनने ना भूलिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और रात 8 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत श्रोताओं आज आप सुनेंगे अभिनेत्री भूमिका चावला पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। 9:30 पर आनंद लीजिएगा रंगे गजल का। 10 सुनेगा हिमाचली लोकगीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल ओडिशा तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 वर्षात् 31,2,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य 4 मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,300,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्षते यत्

0: अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशांत क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मंत्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथि आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 सायं 5 संसद भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर

0: के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द 5th इज द हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of the National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. The Ministry of Education has informed that the last date for online registration for Yuva Sangam Phase 7 has been extended till the 31st of this month. The Ministry said that the extension will provide an additional opportunity to eligible youth from across the country to register and participate in this unique youth exchange program. Earlier, the last date to register for Yuva Sangam Phase 7 was 18th of August. Interested youth aged between 18 to 30 years, including students of higher education institutions, NSS volunteers and young professionals can register through the official Yuva Sangam portal. For Yuva Sangam Phase 7, 20 higher

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। कार्यक्रम शुरू हो गया है सुबह सुहानी। और श्रोताओ अगले कुछ पल हम साथ बिताएंगे मधुर गीतों, प्रेरक विचारों, जानकारी भरे पलों और बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कहते हैं श्रोताओं कि सुबह की शुरुआत अगर एक खूबसूरत सोच के साथ हो तो पूरा दिन ही कुछ बेहतर और सकारात्मक महसूस होता है। तो चलिए फिर आज के इस दिन की शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे ही शुभ विचार के साथ। दोस्तों, सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे विचारों में छुपा होता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, सच तो यही है कि दुनिया चाहे कितनी भी शोर शराबे वाली क्यों ना हो, अगर मन शांत है तो विचारों में सकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है और हर तरफ आनंद ही आनंद सा लगता है। और अगर सोच में नकारात्मकता भर जाए तो महलों के सुख भी फीके लगने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सुविचार ने आपके दिल को एक सुकून

तो श्रोतो, अभी आपने सुना ये मधुर सा गीत। संगीत हमें सुकून देता है और इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, जहां जानेंगे कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। श्रोतो, वर्ष 1628 में शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कार्य आज ही के दिन शुरू करवाया था। 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। केरल के मलाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत भी श्रोताओ आज ही के दिन हुई, साल 1921 में। साल 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरें लेने और अध्ययन के लिए वाइकिंग 1 मिशन आज ही के दिन लॉन्च किया था। और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनका जन्म और निधन आज ही के दिन हुआ। 1944 में भारत के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म आज ही के दिन हुआ। जी हां, आज उनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कार्यक्रम में आगे। सन 1917 में श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ त्रिलोचन शास्त्री का। वे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि और लेखक थे। उन्हें सुल्तानपुर का शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। साथ ही श्रोताओं, भारत की प्रसिद्ध महिला शतरंज खिलाड़ी तान्या सचदेव का जन्म भी 20 अगस्त सन 1986 में आज ही के दिन हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम किए। में श्रोताओं, ओडिया साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोपीनाथ मुंडाल का आज के दिन निधन हुआ था। भारतीय तर्कवादी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र धावोलकर का भी निधन आज के दिन सन 2013 में हुआ था। सन 2011 की बात करें तो आज के दिन भारत के महान इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का भी निधन हुआ। इन्होंने प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर कई प्रामाणिक पुस्तकें लिखीं। श्रोताओं, फिर से अब रुख करते हैं गीत संगीत की और आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम सुबह सुहानी में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म आज ही के दिन सन 1944 को मुंबई में हुआ था। वर्ष 1984 में वे देश के सबसे कम उम्र के छठे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और कंप्यूटर के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनका भारत के आधुनिक विकास में अहम योगदान माना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी उनके प्रयास महत्वपूर्ण रहे। श्रोताओं, उनके जन्म दिवस पर देश भर में आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। और उनके जन्म दिवस को आज हम सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे समरसता दिवस भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के निधन के बाद उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। आज के दिन देश भर में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में सभी नागरिक सद्भाव

0: न की शपथ लेते हैं। इस अवसर पर हर साल राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। साथ ही श्रोताओं, आज पारसी समुदाय में पैगंबर जरथुस्त्र की जयंती है, जिसे खोरदाद साल कहा जाता है। श्रद्धा और उत्साह से आज इसे मनाया जा रहा है। जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने सत्य, सदाचार और नेक विचारों पर आधारित जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर पारसी समुदाय अपने मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, अपने ग्रंथों का पाठ करते हैं और मानवता, शांति तथा सद्भावना की कामना भी करते हैं। ये दिन समाज को सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब फिर से हम रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी। श्रोताओ आपको बता दें कि आज 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी हम मना रहे हैं। ये दिन देश में सौर, पवन, जल और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में उपयोग और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2004 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का। आइए नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। देश के युवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नई दिल्ली के यशोभूमि में भारत की प्रमुख बिल्डिंग मटेरियल्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई प्रदर्शनी मैटेसिया 2026 का आगाज आज से हो रहा है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में देश की प्रमुख ट्रेवल ट्रेड प्रदर्शनियों में से एक TTF मुंबई 2026 की शुरुआत आज से होगी, जो 3 दिन तक चलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों के अगले दौर के मैचों पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे पहाड़ी इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। बात करें धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों की, तो यहाँ बादल छाए रहेंगे और कहीं पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: किया तूने।
1: कहा जाता है न श्रोताओं के कल फिर मिलने के लिए आज अलविदा कहना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से हम अलविदा कह रहे हैं, लेकिन आपके मनोरंजन का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।
2: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: दुर्गा तेरा मंदिर बनया सुंदर सुहावना।
0: शुरुआत हम कर रहे हैं शरवण राम और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

सुनील राणा का गाया हुआ ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: राजकुमार और साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत भी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: श्रोताओ, कार्यक्रम के आखिर में कश्मीरी राम और साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: माया सिलाई।
1: इसी लोकगीत के साथ श्रोताओ, हमारा आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं श्रोताओ, अब सुनिए देश गान।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट

0: मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोन बरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी

0: द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अगले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।

0: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्सलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
3: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar.

तेरे नाम फिल्म से ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी। मोहरा फिल्म से ये गीत अब आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में।

0: गाने सुहाने समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara with strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from

0: just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
0: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
4: प्रदीप
5: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: कार्यक्रम गाने सुहाने में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: तो श्रोताओ, अभी जो गीत आपने सुना इसे हमने लिया था मुस्कान फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने इस गीत को गाया था।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.
4: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
5: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
4: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
5: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
4: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गीत श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे और अब आपको सुनवा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। दिल है तुम्हारा इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं।

इसी गीत के साथ श्रोताओं, आज का ये गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सचिता। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपका हमारा हम सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गीतांजलि। हर दिन ये कार्यक्रम बहुत ही खास होता है। आज का भी ये कार्यक्रम बहुत खास है और तो और आज का ये दिन भी बहुत खास है। क्यों खास है हम आपको बताते हैं। श्रोताओ आज 20 अगस्त है और आज पूरे देश में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय रेडियो दिवस, यानी कि हमारा अपना दिवस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सीमाएं लांघकर सीधे हमारे दिलों तक पहुंचता है। कभी सिलवटों वाली आवाज में खबरें सुनाता रेडियो, तो कभी देर रात के उन सुरीले नगमों का साथी। रेडियो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। आज उसी जादुई सफर को सेलिब्रेट करने का दिन है। श्रोताओ आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में हम बात करेंगे रेडियो के उस रिश्ते की जो हमारे और आपके बीच है। तो क्या है आपकी रेडियो से जुड़ी हुई वो बचपन की याद? क्या आपने कभी किसी कार्यक्रम में फोन करके अपनी फरमाइश पूरी करवाई है, या फिर आज के दौर में रेडियो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना हुआ है? इसी तरह की बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारी फ़ोन लाइंस बिल्कुल खुल चुकी हैं, तो आपको डायल करना होगा हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर 01892224391। जी हाँ, इसी नंबर को मिलाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जब तक कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, हम इस कार्यक्रम को सजाते हैं गीत संगीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम है लाइव ऑन इन गीतांजलि। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रेडियो दिवस की। रेडियो एक ऐसी आवाज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिल तक पहुंचती है। एक ऐसी आवाज जो कभी सुबह की शुरुआत बनती है, कभी सफर की साथी और कभी अकेलेपन में अपना सा एहसास देती है। तो श्रोताओ, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है रेडियो के बारे में, अपनी याद हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। जब तक कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ, कार्यक्रम है गीतांजलि। और श्रोताओं, आपको बता दें कि फ़ोन लाइंस में खराबी होने के कारण हमारे श्रोता हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है कि हमारे श्रोता हम तक पहुंच सकें। तो श्रोताओं, हम कार्यक्रम में रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए, आप बस बने रहिए हमारे।

0: साथ।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: Step into the world of Nexa.
5: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
5: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.

श्रोतो, आज जैसा कि हमने आपको बताया कि हम राष्ट्रीय रेडियो दिवस मना रहे हैं और भारत में रेडियो श्रोता दिवस भी आज ही के दिन हम मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंचार, मनोरंजन और सूचना के इस शक्तिशाली माध्यम के ऐतिहासिक योगदान को याद करना और इसके प्रति आभार व्यक्त करना है। भारत के कई रेडियो श्रोता संघ 20 अगस्त 1921 को देश में हुई शुरुआती रेडियो प्रसारणों की याद में इस दिन को रेडियो श्रोता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये दिन संगीत, समाचार और आपातकालीन स्थितियों में दूर दराज के इलाकों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने वाले रेडियो के सफर का जश्न मनाता है।

0: जी हाँ श्रोताओ, लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, हमारी पहले वाली लाइन खराब होने की वजह से हमारा नंबर बदल चुका है। आप सभी नया नंबर नोट कर लीजिए, 01892223239, यानी कि 01892223239। श्रोताओ, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय हो चला है प्रादेशिक समाचारों का और इस कार्यक्रम के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे 9:30 पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, सुबह के 9:19 हो चुके हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। सत्र के सफल व सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के 78वें स्थापना दिवस पर शिमला में आज होगा समारोह। वैज्ञानिक, किसान व प्रतिभागी कार्यक्रम में होंगे शामिल। हमीरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगों को उपलब्ध करवाएंगी घर द्वार पर ही बैंकिंग सुविधाएं। कांगड़ा जिला में ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए बनी बेहतर कमाई का जरिया। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोलने का कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 21 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र की पहली बैठक सुबह 11 शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: प्रदेश विधानसभा के शिमला में होने वाले मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। 3 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। अधिकतर पूछे गए प्रश्नों में आपदा राहत राशि, स्कूलों का विलय, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नशे की रोकथाम इत्यादि शामिल हैं। 27 अगस्त का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। सत्र के सफल व संचालन के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच सत्र शुरू होने से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मॉनसून सत्र के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला का 78वां स्थापना दिवस समारोह आज संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में शिमला के सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में वैज्ञानिकों, किसानों, स्कूली विद्यार्थियों सहित कई प्रतिभागी शामिल होंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान की ओर से देश में आलू अनुसंधान उत्पादन और इससे जुड़े क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और योगदान को सामने रखा जाएगा। प्रदेश के बागवानों को उपज के बेहतर भंडारण, उचित बाजार मूल्य और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से शिमला में कोल्ड स्टोर क्रांति विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। बागवानी विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विद्या प्रकाश बैंस ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भंडारण सुविधाओं से बागवान तुड़ान के तुरंत बाद अपनी फसल को सुरक्षित रखकर बाजार की मांग व कीमतों के अनुसार बिक्री का समय स्वयं तय कर सकेंगे। इस दौरान अन्य भागी विशेषज्ञों ने एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 50% अनुदान पर 5 और 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित करने पर बागवानों को जानकारी दी। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हाल ही में हुई नियुक्तियों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राज्य सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाल ही में की गई नियुक्तियों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री तिलक पटाकू ने कहा कि यदि सरकार ये नियुक्तियां रद्द करके ओबीसी वर्ग से योग्य लोगों को आयोग में स्थान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जो ओबीसी वर्ग से संबंधित नहीं है। तिलक पटाकू ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है और इस वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हमीरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब घर द्वार पर ही बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण लेंगी, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी और लोगों को डिजिटल लेन देन सहित अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब बैंकिंग सुविधाओं के लिए बार बार बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर द्वार पर ही उन्हें बैंक से जुड़ी कई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण लेंगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है। प्रशिक्षण इसी माह आयोजित किया जाएगा। इसमें महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाएं और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं बैंकिंग प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेंगी और लोगों को खाते से जुड़ी सेवाएं, डिजिटल लेनदेन सहित अन्य सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलने के साथ साथ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार होगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
3: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, NSS वॉलंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल है, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। कांगड़ा जिला में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती सिर्फ खेतों तक सीमित न रहकर प्रोसेसिंग के जरिए किसानों के लिए कमाई का साधन बन गई है। नगरोटा बगवां के फल डिब्बाबंदी केंद्र में पहली बार प्राकृतिक तरीके से तैयार ड्रैगन फ्रूट से जैम बनाया गया है, जो किसानों के लिए वैल्यू एडिशन की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
6: बाजार में बड़े और अच्छी गुणवत्ता वाले ड्रैगन फ्रूट आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन छोटे आकार के या अतिरिक्त फल कई बार किसानों के लिए चुनौती बन जाते हैं। ऐसे फलों को खराब होने से बचाने और उनकी कीमत बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग किसानों को प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी पहल का लाभ उठाया कांगड़ा के सेवानिवृत्त व्याख्याता जीवन सिंह राणा और उनके बेटे आशीष सिंह राणा ने। उन्होंने अपनी प्राकृतिक खेती से तैयार ड्रैगन फ्रूट को प्रोसेस करवाकर करीब 23 किलो जैम तैयार किया। जीवन सिंह राणा ने करीब 500 पौधों से ड्रैगन फ्रूट की खेती का सफर शुरू किया था। आज उनके 35 कनाल क्षेत्र में करीब 5000 पौधे हैं। उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रदेश की पहली पंजीकृत ड्रैगन फ्रूट नर्सरी भी स्थापित की है। कांगड़ा की ये पहल दूसरे किसानों के लिए भी खेती में वैल्यू एडिशन और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
3: प्रदेश की सुख समृद्धि, विश्व शांति और प्राकृतिक आपदा से बचाव की कामना को लेकर मंडी जिले के बालीचौक स्थित सुनारू वंश के आराध्य देव मार्कंडेय ऋषि जी करीब 18 साल बाद आज लाहौल के त्रिलोकनाथ धाम में पधारेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रिलोकनाथ धाम मार्कंडेय ऋषि की प्रमुख तपोस्थली रहा है और मंदिर में जलने वाली अमर ज्योति भी इन्हीं के द्वारा प्रज्वलित मानी जाती है। इस ऐतिहासिक देव यात्रा को लेकर श्रद्धालु और देव कमेटी में भी भारी उत्साह का माहौल है। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में आज श्रावण अष्टमी की धूम है। श्रद्धालु सुबह से ही अष्टमी पूजन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में अब तक श्रावण मेलों के दौरान 50,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना

0: चुके हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, हालांकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से राज्य में 166 सड़कें अवरुद्ध है, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा 130 बिजली ट्रांसफार्मर और 222 पेयजल योजनाएं भी ठप है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को सुर्खी दी है, चंद्रताल, शिकारी देवी व चूड़धार के लिए सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जबकि पंजाब केसरी के शब्द है, हिमाचल के अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में सड़कों के निर्माण पर रोक। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, मनरेगा कर्मचारियों का मानदेय नहीं होगा कम। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हिमकेयर मामले में पुरुषों का बच्चेदानी के पैकेज में इलाज कैसे हुआ, भाजपा विधायक से विजिलेंस मांगेगी जवाब। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। सत्र के सफल व सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के 78वें स्थापना दिवस पर शिमला में आज होगा समारोह। वैज्ञानिक, किसान व प्रतिभागी कार्यक्रम में होंगे शामिल। हमीरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगों को उपलब्ध करवाएंगी घर द्वार पर ही बैंकिंग सुविधाएं। कांगड़ा जिला में ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए बनी बेहतर कमाई का जरिया। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोलने का कार्य जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक से 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग।

0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रेडियो दिवस की, जो कि आज हम मना रहे हैं। लाइव फोन इन ये कार्यक्रम है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 01892223239। जी हाँ, ये नंबर डायल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज बात सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि आज के इस तेजी से भागते हुए सोशल मीडिया और रील्स के दौर में भी आखिर रेडियो हमारा साथी कैसे बना हुआ है। इस माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपकी रेडियो से संबंधित कोई याद है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। एक श्रोता लाइन पर है, इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार जी।
1: हाँ नमस्कार मैडम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, कही आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है, क्या कहना चाहते हैं?
1: बस मैडम जी, ये सबसे पहले तो रेडियो दिवस की और रेडियो श्रोता दिवस की आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
0: जी।
1: हाँ, ये खास दिन आज के दिन जो रेडियो के प्रेमी हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, जो वर्षों से रेडियो के साथ में रह रहे हैं, उनके लिए दिन मनाया जाता है। और हमारा तो रेडियो से बहुत पुराना नाता है
0: जी। वही हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का रिश्ता है आपका रेडियो के साथ।
1: मैडम जी, मेरा तो मतलब बचपन से ही रेडियो सुनता आ रहा हूँ, करीब 40 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे रेडियो सुनते हुए। मेरे पिताजी के दौर से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। जब पुराने दौर में आपने देखा होगा कि घर में बड़े बड़े वॉल वाले रेडियो सेट होते थे पुराने।

0: जी
1: जी जब से जुड़ा हुआ हूँ पिताजी का सुनते सुनते मुझे भी धीरे धीरे ये रेडियो का शौक लग गया, और जब से मतलब रेडियो एक परिवार का हिस्सा बन चुका है हमारे हमारे घर में, मतलब सभी रेडियो सुनते हैं। और मेरे पिताजी की कुछ यादें हैं जो रेडियो से मैं हमेशा सुनता हूँ। पिताजी तो अब मेरे नहीं रहे हैं, पर उनकी यादों को मैं रेडियो के सहारे अपने दिलों में सजाए हुए रखा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जब बचपन में मैं सुनता था ना, तो मुझे वो हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि मैं उसकी ट्यूनिंग सेट कर जो चेंज कर देता
0: जी
1: था।
0: जी तो
1: और अब आज
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: लगा जानकर कि आपने अपने पिताजी की याद जो है वो संभाल कर रखी है रेडियो के रूप में।
1: जी बिल्कुल। और अब तो ये देखिए धीरे धीरे रेडियो का जो ये आधुनिक युग आया है, अब पहले जब हम ट्यूनिंग सेट करके रेडियो को ट्यूनिंग लगाते थे कोई सा भी स्टेशन, अब आधुनिक युग आ गया। धीरे धीरे जो ये डिजिटल भारत आया है, इंटरनेट आया है, इसके माध्यम से हम भारत के किसी भी चैनल को मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से सुन सकते हैं। जैसे अभी मैं आपका चैनल अभी मोबाइल पर भी सुन रहा हूँ और आपसे
0: जी
1: दूसरे फोन से बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत
1: ये जो
0: सारे
1: संचार क्रांति
0: हमारे
1: आई है,
0: जी
1: जी ये संचार क्रांति जो आई है, ये बहुत अच्छा एक नवा नया डेवलप हुआ है रेडियो, और रेडियो अब देश के कोने कोने से विदेश तक पहुंच चुका है।
0: जी बहुत गहरा प्यार है आपका रेडियो के साथ, आपकी बातों से हम जान पा रहे हैं, और नियमित श्रोता हैं आप हमारे, और रेडियो ऐप के माध्यम से अभी आप हमें सुन रहे हैं। तो आप से हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी रेडियो सुना करते थे, उसी तरह से आप भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके बच्चे भी रेडियो सुनते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं?
1: हाँ मैडम जी, मैडम जी सुनते हैं, घर में एफएम सेट लगा हुआ है, वो सुबह और शाम दोनों समय चलता है, और मैं जब तक उसको सुबह उठकर ऑन नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है घर में एक सुनापन लगता है, तो वो निरंतर चलता रहता है यहाँ पर।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रेडियो के प्रति आपके जो विचार हैं, आपका जो प्यार है उसके बारे में जानकर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: जी
0: जी
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी यूं ही जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ।
1: जी धन्यवाद।
0: तो शो, तो इसी तरह से अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रेडियो से जुड़ी हुई अपनी कोई याद हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01-892-22-3239।

जी, लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रेडियो दिवस की। एक और श्रोता हम तक पहुंच गए हैं। हेलो हेलो,

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: रजिंदर मन्हास बोल रहा हूँ, शाहपुर से, कांगड़ा से हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत ही सालों के बाद लगता है आपने कॉल किया है।
1: जी काफी टाइम हो गया, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई नए साथी जो हमारे जुड़ना चाहते हैं पहले उनका बनता है। हम तो चलो बहुत पुराने श्रोता हैं धर्मशाला के।
0: लेकिन फिर भी रेडियो के साथ आप जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, रोज का रूटीन है, जब भी मैं ऑफिस निकलता हूँ तो गाड़ी में भी FM धर्मशाला ही चला होता है।
0: जी
1: और काफी अच्छा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अकॉर्डिंग टू मौसम जो है आपका कार्यक्रम रहता है, जैसे गाना कोई चल रहा हो तो बारिश है तो नेचुरली बारिश वाला मैंने अक्सर देखा है कि गाना बज रहा होता है तो अच्छा लगता है सुनना।
0: जी तो बताइए, कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसका इंतजार आपको बड़ी ही बेसब्री से रहता है?
1: देखिए मैडम, सबसे जो हम 9:30 बजे जो आपके जो सुबह के कार्यक्रम रहते हैं, जैसे ये फोन इन है, फिर आपने एक मेल वाला शुरू किया हुआ है जो मेल के
0: जी
1: माध्यम से भी गाने सुन सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है और यही सुनते हैं हम ज्यादातर, क्योंकि ये समय रहता है गाड़ी में रेडियो सुनने का तो 10 बजे तक जो है यही चलता है। इससे पहले बचपन में मैडम एक कार्यक्रम आता था, मेरी बड़ी याद जुड़ी हुई है उससे,
0: जी जी
1: हवा
0: बिल्कुल,
1: महल
0: साझा
1: वो
0: कीजिए।
1: हवा महल कार्यक्रम आता था बहुत पहले, मेरे ख्याल 80 के दशक में होगा ये कार्यक्रम आता था,
0: जी जी
1: और शाम को प्रसारित होता था। तब तो मेरे ख्याल धर्मशाला FM तो नहीं होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल राष्ट्रीय स्तर पे आता था ये
0: जी
1: रेडियो पे ना, और उसमें जो कहानी सुनाई जाती थी तो हम छोटे बच्चे थे तो हम उसको उस जो कहानी सुनाई जाती थी उसको चित्रण जो था अपने मन में करते थे, और वो कहानियां, इसीलिए रेडियो का एक जो प्रभाव ये है कि रेडियो में जो सुनते हैं उसका चित्र हमारा दिमाग जो है मन में वो घेरता है और वो काफी समय तक याद रहता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह की आपकी यादें रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम रेडियो सुनते हैं, लेकिन उन घरों में ज़रूर रेडियो सुना जाता होगा जिनके माता-पिता रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल, और हमारे तो सुबह जब पूजा का टाइम होता है तो शुरुआत ही FM धर्मशाला से भजन के माध्यम से होती है, और 6 बजे जो कार्यक्रम आपके शुरू होते हैं 6:30 पौने 7 बजे तक, एक मतलब उसका मतलब हमें एक आदत हो गई है उस कार्यक्रम की।
0: जी बहुत अच्छा लगा जानकर। और ये भी बताइए कि आपको वो दिन याद है जब पहली बार आपने आकाशवाणी धर्मशाला में कॉल किया था अपनी फरमाइश पूरी करवाने के लिए?
1: हाँ, जी, कई सालों से कर रहे हैं हमारे हमें FM धर्मशाला ने बुलाया भी था, और एक ग्रुप भी इनका FM धर्मशाला का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जो कॉलर है उनका, और उसमें काफी कॉलर जुड़े थे, बड़ी पहले कोशिश की गई थी धर्मशाला की, और उस समय से हम काफी जुड़े हुए हैं, और पर अब कोशिश ये करते हैं कि नए जो श्रोता है उनको भी मौका मिले
0: जी बहुत अच्छी
1: ताकि।
0: बात आपने कही है, और आपके अनुभव जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, और यूं ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम गीतांजलि में।
0: मैडम जी, मैं राकेश से बोल रहा हूँ।

0: के लोग थे वो भी गाने सुनने के लिए हमारे घर में आने शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम पड़ोस में किसी के पास रेडियो नहीं होता था नहरू जी, तो वो भी एक समय था नहरू जी।
1: जी तब आप कितने साल के थे तब आप?
0: मैं ये तो हमारे पैदा होने से पहले की बात है मैडम जी।
1: अच्छा, आपके पिताजी आपको ये किस्सा सुनाते थे?
0: हाँ, किस्सा सुनाते थे मैडम जी। जब हमने रेडियो शुरू किया तो उन्होंने हमें ये किस्सा सुनाया कि बोला आस पड़ोस के रेडियो भी रेडियो मतलब गाने सुनने के लिए भी हमारे घर में आते थे, और काफी लोग जब प्रोग्राम आता था ना जी तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम लेडीज वाइफ ही होती थी ऑलमोस्ट, तो घर में रेडियो गाने वो सुनने आते थे, तो वो समय था मैडम जी। अच्छा, उसके बाद मैंने तो खुद 1977 से मैंने रेडियो का प्रोग्राम सुनने शुरू किए मैडम जी, और तब हम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रोग्राम आता था, फरमाइशी प्रोग्राम आता था, उसमें हम फरमाइश वगैरह भेजते थे काफी, और हमारी फरमाइश प्रोग्राम भी आते थे, गाने आते थे, उस टाइम हम सुनते थे। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद हम जलंधर से भी प्रोग्राम आता था गाने का, फरमाइशी प्रोग्राम वो भी सुनते थे, फिर 95 से हम आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़ गए मैडम जी, और उसके बाद हम लगातार आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े हुए, और आपका हमें प्यार मिल रहा है मैडम जी आज तक।
1: जी, आप ही जैसे श्रोताओं का प्यार भी हमें मिलता रहता है, तभी तो निरंतर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो की कोई एक खास बात अगर आपको बतानी हो तो वो क्या होगी?
0: अच्छा मैडम, मैं एक बड़ी खास बात सुनाता हूँ। जब बिल्कुल छोटे थे तो ये इसका नाम थे ना सलोन से प्रोग्राम आता था, हम इंसानी जी प्रोग्राम पेश करते थे ना जी, दिनांक का प्रोग्राम था, उसके बाद वो सिवा का हो गया था चेंज, तो उस टाइम रात को जो 8 से 9 बजे तक प्रोग्राम आते थे ना, गाने देते थे कि सप्ताह में कौन सा गाना जो है वो इजरा बोल के, तो उस टाइम आपस में जो लोग गाने सुनते थे शर्त लगा लेते थे कि इस हफ्ते जो ये गाना फर्स्ट आएगा इस हफ्ते वो गाना फर्स्ट आएगा बोल के मैडम
1: जी। जी, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हैं आपके रेडियो के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्यार आपका हमारे साथ यूं ही बना रहेगा। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हाँ श्रोताओ, इसी तरह से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और रेडियो से जुड़ी हुई अपनी कोई याद हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत ही कम समय अब हमारे पास बचा हुआ है, नंबर आपको बता देते हैं 01892223239, और कार्यक्रम है लाइव फोन इन गीतांजलि। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता।

0: जी तो श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए।
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी कहिए, आज के इस विषय के बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह जुड़े आप रेडियो के साथ?
1: एकदम सारगर्भित विषय है। आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के भिलाई में श्रोताओं का एक सम्मेलन आयोजित है
0: जी,
1: और देश भर के तकरीबन 400 से 500 श्रोता आज शामिल हो रहे हैं।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: और दो दिन का कार्यक्रम है, कल 19 अगस्त वाला कार्यक्रम था और आज फिर है, और बहुत सारे आकाशवाणी के तो उद्घोषक भी पहुंच रहे हैं
0: जी।
1: तो रेडियो से जुड़ी जो खट्टी मीठी यादें हैं यही सबसे ज्यादा खास होती हैं, जिन दोस्तों का नाम हम रेडियो पे सुनते हैं
0: जी जी,
1: और उनसे प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होता है
0: तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत ज्यादा। उस खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, उसको एक भावनाओं में समझा जा सकता
0: जी,
1: है।
0: सालों से रेडियो पर आवाज सुनते आ रहे थे लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन चेहरों को देख भी पा रहे हैं, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत ज्यादा, मतलब ये तो एक तमन्नाओं के पूरे होने का मतलब एक सिलसिला होता है कि जिनको हम केवल आवाज से पहचानते थे उनको सामने प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: जी। तो दोस्तों, आज राष्ट्रीय रेडियो दिवस के इस खास मौके पर हमने याद किया बचपन का वो पुराना बक्सा, वो फरमाइशी गीत, और आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो के साथ हमारे उस अटूट रिश्ते को। आज की इस महफिल में जितने भी फ़ोन कॉल्स हमें आए, जितने भी किस्से आपने साझा किए, उनसे एक बार फिर यही साबित हुआ कि तकनीक चाहे जितनी भी बदल जाए लेकिन आवाज़ का जादू और दिलों का ये रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। जैसा कि हमने कहा था श्रोताओं कि कल फिर मिलने के लिए आज अलविदा कहना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज के इस सफ़र को और राष्ट्रीय रेडियो दिवस की इस सुहानी महफिल को यहीं देते हैं विराम। फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात, कुछ नई बातों, कुछ नए संगीतों के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। जी हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है एक ऐसे कारवा का जिसको आप फुले एंटरटेन करते हैं कुछ ऐसे गानों के साथ जो आपका दिन बना देते हैं। तो चलिए भी जल्दी से आगाज कर लेते हैं गीतों का कारवां प्रोग्राम का, जिसे लेकर आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा। तो सबसे पहले हमारे तमाम लिसनर्स को हम देना चाहेंगे राष्ट्रीय रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। बातें होगी, खूब सारी मुलाकातें होगी उन गीतों के साथ जो आप कहीं ना कहीं आपके दिल के करीब है, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां प्रोग्राम अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ, जहां हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ बेहतरीन से गीत। जी हाँ, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आपको जोड़ता है हमारे दिलों के साथ, और हम जुड़ पाते हैं अपने लिसनर्स के साथ जो कि बड़े ही गौर से सुनते हैं हमें सुबह से लेकर शाम तक। तो उन तमाम सुनने वालों के लिए हम प्ले कर रहे हैं ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ और कनिका कपूर की।

श्रोता, गीतों का कारवा कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं आप ऐसे गीत जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा झूमने पर मजबूर कर रहे होंगे। तो एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: ट्यूनिंग है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां प्रोग्राम। जी हाँ, फ्रिक्वेंसी वही आपकी जानी पहचानी सी, जहां हम आपके लिए प्ले करते हैं कुछ बेहतरीन से म्यूजिकल नंबर। एंजॉय कीजिए और दिल से जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का गीतों का कारवां प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, क्योंकि हमारे पास अभी ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं आप सभी का मनोरंजन करने के लिए। और इसी श्रृंखला में अगला प्रोग्राम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ। इस गीत को गाया है शांति बिष्ट और कमलेश शर्मा ने।

पहाड़ों की सुर प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज में।

श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ लोक गाथाओं, लोक परंपराओं पर बने हुए लोकगीत। ऐसा ही लोकगीत अभी आपने सुना राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत अब आप सुनेंगे रोशनी देवी की आवाज में।

0: आज का पहाड़ों की सुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार मोबाइल न्यूज़ ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 21 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र की पहली बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: प्रदेश विधानसभा के शिमला में होने वाले मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। 3 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। अधिकतर पूछे गए प्रश्नों में आपदा राहत राशि, स्कूलों का विलय, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नशे की रोकथाम इत्यादि शामिल हैं। 27 अगस्त का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। सत्र के सफल व संचालन के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच सत्र शुरू होने से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मॉनसून सत्र के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला का 78वां स्थापना दिवस समारोह आज संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में शिमला के सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में वैज्ञानिकों, किसानों, स्कूली विद्यार्थियों सहित कई प्रतिभागी शामिल होंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान की ओर से देश में आलू अनुसंधान उत्पादन और इससे जुड़े क्षेत्रों में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों और योगदान को सामने रखा जाएगा। जनगणना 2027 के तहत इस बार जनगणना पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होगी। व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के साथ उसकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, प्रवास, दिव्यांगता, आवासीय स्थिति और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना 2027 देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इस बार डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन और डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे घर घर जाकर जानकारी दर्ज करने के साथ उसके प्रबंधन और निगरानी को भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां बर्फबारी और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या गणना का कार्यक्रम अन्य राज्यों से अलग रखा गया है। प्रदेश में जनसंख्या गणना अगले माह सितंबर में की जानी है। हमीरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब घर द्वार पर ही बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण लेगी, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी और लोगों को डिजिटल लेनदेन सहित अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
4: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब बैंकिंग सुविधाओं के लिए बार बार बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर द्वार पर ही उन्हें बैंक से जुड़ी कई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए 6 विकास खंडों की 30 महिलाएं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण लेंगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है। प्रशिक्षण इसी माह आयोजित किया जाएगा। इसमें महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाएं और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं बैंकिंग प्रतिनिधियों के तौर पर कार्य करेंगी और लोगों को खाते से जुड़ी सेवाएं, डिजिटल लेनदेन सहित अन्य सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलने के साथ साथ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार होगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
2: प्रदेश की सुख समृद्धि, विश्व शांति और प्राकृतिक आपदा से बचाव की कामना को लेकर मंडी जिले के बाली चौकी स्थित सुनारू वंश के आराध्य देव मार्कंडेय ऋषि जी करीब 18 साल बाद आज लाहौल के त्रिलोकनाथ धाम पधारेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रिलोकनाथ धाम मार्कंडेय ऋषि की प्रमुख तपोस्थली रहा है और मंदिर में जलने वाली अमर ज्योति भी इन्हीं के द्वारा प्रज्वलित मानी जाती है। इस ऐतिहासिक देव यात्रा को लेकर श्रद्धालु और देव

अमेठी में भी भारी उत्साह का माहौल है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, हालांकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से एक NH और 145 सड़कें अवरुद्ध है, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा 130 बिजली ट्रांसफार्मर और 222 पेयोजनाएं भी ठप पड़ी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और देखिए, सुबह के 11:05 हो चुके हैं और यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं पंजाबी गीतों एवं लोक गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब दी, जहाँ हम आपको सुनवाएंगे कुछ बेहद प्यारे प्यारे से गीत और सुनेंगे कुछ लोक गीत भी। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी।

जी हाँ, पंजाबी गीतों की बीट पर आप थिरक रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी। प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग अब हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं दिलेर मेहंदी की आवाज में।

हाँ लिसनर्स, जब पंजाबी गाने एक बार बज जाते हैं ना, तो बल्ले बल्ले होना तो भाई लाजमी ही होता है। बहरहाल आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब दे।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
2: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
3: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
3: Hurry, limited stock available.
2: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
5: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio, every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
6: जी हाँ, ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, सुन रहे हैं प्रोग्राम महक पंजाब दी।

शुद्ध पंजाबी गाने हमेशा से ही महफिलों की जान रहते हैं और इन गानों को सुनने के बाद शायद ही कोई अपने पांव को थिरकने से रोक पाता है। और आज के महक पंजाबी प्रोग्राम में हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ ऐसे ही म्यूजिकल नंबर्स। एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ श्रोताओ, इसी के साथ आज का महक पंजाबी प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी,
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी,
3: अब वो तितली

0: बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
1: जी।
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ, भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो, अब चल भी, बहस मत कर।
1: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
4: अरे आ गए, देखो,
5: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का

0: चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो।
0: आहा आहा,
2: नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
2: रिम झिम वर्षा आई, चहूं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यू चलता जाता।
2: तो बच्चों कैसा लगा भाषा का ये खेल?
3: बहुत अच्छा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
5: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
6: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
7: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
8: वैसे तनु, आज बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
9: जी,
8: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
9: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
8: ये कैसी अजीब बात है?
9: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
8: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
9: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
8: अच्छा बेटा तनु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
9: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
8: अच्छा।
9: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
8: हाँ, बेटा
9: जल्दी सुनाइए।
8: अरे सोचने तो दो,
9: जल्दी
8: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
9: अरे जीवन काका।
8: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
10: बाबूजी,
8: हाँ?
10: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
8: अरे भाई बारिश

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती ही हो

0: ये हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते।
1: हाँ,
0: लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी।
0: समझ गई ना?
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह एक बार फिर आ गए हैं हम अपने उन तमाम वीरों का मनोरंजन करने के लिए जो सरहदों की रक्षा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम है सैनिकों के लिए और आपके मनोरंजन के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जॉली LLB 2 फिल्म से ये गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: सैनी भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान में, फिल्म है दबंग।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में सिटी लाइट फिल्म से ये गीत। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

उम्मीद दा दामन कदी नहीं छड़ना, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, क्योंकि नई सुबह अपने कन्ने नई रोशनी जड़ी असें जरूर लेके आउंदी। तो इन्हां खूबसूरत पंक्तियों कन्ने आगाज़ करदे अज दे कार्यक्रम सुनो सखी दा। अज दा कार्यक्रम असां दी अपनी पहाड़ी बोली च हुंदा सिखियो, ते इस सांस तों अपनी सिखियां कन्ने गल्लां करना दा जिहड़ा से होर भी आनंद हुंदा, होर भी खरा लगदा। तो अज दे कार्यक्रम में तां जो मैं तुहांदी अपनी रेडियो सखी माया ते कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारियां सखियां जो साड़ी तरफी ते प्यार भरी राम राम। तो सभना का पहले ऐसा कार्यक्रम च गल करनी है अज दे दिने दे बारे च। जी हां सखियो, अज 20 अगस्त है, ते 20 अगस्त यानी अज दे दिने असां दे देसी दे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दी जयंती जिहड़ी असां मनाई जांदी है। ते राजीव गांधी दी जयंती जो ही सद्भावना दिवस दे रूप च भी मनाया जांदा है। सद्भावना दिवस का मुख्य उद्देश्य जिहड़ा से समाज च आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति ते एकता दी भावना जो बधाना है। दिखा सादा देश अलग अलग धर्म, भाषाएं, जाति ते संस्कृतियां वाला देश है। इस खातर देसे दी एकता ते अखंडता बनाए रखनी वास्ते जिहड़ा से आपसी सम्मान ते सद्भाव जिहड़ा से बड़ा जरूरी है। अज दे दिने विद्यालयां च, सरकारी संस्थानां ते होर भी दूजी जगह पर सद्भावना कन्ने जुड़े कार्यक्रमां दा जिहड़ा सा भी आयोजन कीता जांदा है, ते कन्ने कन्ने लोकां जो बिना कुसी भेदभाव का मिली जुली करी रहने ते देश दी एकता जो मजबूत करने दा संदेश दे जिहड़ा सा दित्या जांदा है। राजीव गांधी दा जन्म जिहड़ा सी 20 अगस्त 1944 च होया थिया, चाहे असां दे देश दे सभना का युवा प्रधानमंत्री च एक थिए। ते राजीव गांधी ने असा दे देश दे आधुनिक तकनीक ते संचार दे विकास पर विशेष ध्यान दित्या थिया। उन्होंने शिक्षा, पंचायती राज ते ग्राएं दे विकास पर जोर दित्या थिया। ते देश दे युवाओं जो उन्होंने राष्ट्रीय निर्माण च अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वास्ते भी प्रेरित कित्या थिया। तो राजीव गांधी जयंती असा जो उन्हां दे देश दे प्रति योगदान जो याद करने दा अवसर दिंदा सिखियो। राजीव गांधी दी जयंती केवल इक महान नेता जो याद करने दा ही दिन नहीं है, बल्कि ये ऐसा जो सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, आधुनिक सोच ते विकास दे रस्ते पर अगे बढ़ने दी प्रेरणा जड़े सह भी दिंदा। तो ये तो गल हुई सद्भावना दिवस पर, यानी राजीव गांधी जी दी जयंती पर हुण असा कार्यक्रम च अगे बढ़ना ते चलना मनोरंजन पासे। जी हाँ, हुण असा सुनना है एक प्यारा जिहा सुरीला लोकगीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: Come on boys, let's go practice.
6: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
7: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
6: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
8: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
9: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: एक बारी फिर स्वागत है सदिया श्रोता सिखें दा कार्यक्रम मिंजरां च। हुण असां गल करनी है राष्ट्रीय रेडियो दिवस पर। राष्ट्रीय रेडियो दिवस हर वर्ष सिखियो 20 अगस्त, जो यानी अज दे दिन मनाया जांदा है। रेडियो दिखा संचार ते मनोरंजन दा एक महत्वपूर्ण साधन है। टेलीविजन, इंटरनेट ते सोशल मीडिया दे आने का पहले रेडियो ही एक अजिहा माध्यम थिया जिहड़ा असां माणुआं तक समाचार, संगीत, लोकगीत, शिक्षा ते मनोरंजन पुजाने दा जिहड़ा सी काम करदा थिया। अज भी रेडियो दी उपयोगिता जिहड़ी सी बिल्कुल भी घट नहीं हुई है, बल्कि FM, डिजिटल रेडियो ते ऑनलाइन प्रसारण दे माध्यम कने इसका स्वरूप जिहड़ा सी बदलोई गया है। हर जानकारी जिया कि खेती कने जुड़ी हो, विद्यार्थियों की कोई जानकारी, जिया शिक्षा जो लेकर हो, शैक्षिक कोई कार्यक्रम हो, या आम नागरिक का कोई समाचार हो, मौसम की जानकारी हो, सब कुछ ऐसा जो जड़ा से रेडियो के माध्यम कने मिल जाता। दूर दराज, ग्रामीण ते पहाड़ी क्षेत्रों भी रेडियो मनोरंजन का एक जड़ा से सरल साधन है। तो राष्ट्रीय रेडियो दिवस असं जो रेडियो के इतिहास के समाज च उसके योगदान का अवसर दिता सिखियो। इस खातर रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ज्ञान, सूचना ते जन जागरूकता का प्रभावी जड़ा से माध्यम भी है। तो यह तो गल हुई राष्ट्रीय रेडियो दिवस पर। हुण असा अगे बढ़ना कने गल करनी है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पर। जी हाँ, हर साल 20 अगस्त यानी अज दे दिन जो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि असा सारे माणु अक्षय ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूक हो। अक्षय ऊर्जा असा जो इन्हां प्राकृतिक स्रोतों का मिलती जिहड़ी लगातार दोबारा उपलब्ध होंदे रहिंदे, यानी कि दोबारा असा जो चीज़ा जिहड़ी इनसे मिलदी रहिंदियां हन, जिवें कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी ते जैविक पदार्थ। अक्षय ऊर्जा दे ये सारे जिहड़े इनसे स्रोत हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ते बायोमास ऊर्जा इसते ही उदाहरण हैं सखियो। अक्षय ऊर्जा दे माध्यम कने ग्रामीण क्षेत्र दे विकास भी दिखा काफ़ी जड़ी से मदद मिली सकती। सौर पैनल, सौर पंप ते दूजे स्वच्छ ऊर्जा तकनीक कने दूर दराज दे क्षेत्रां च भी ऊर्जा दी सुविधा अज जड़ी से असा आसानी कने पुजाई सकते हैं। इस कन्ने किसानां जो सिंचाई वास्ते ते ग्राएं च रहने वाले परिवारां दी दैनिक जरूरतां वास्ते ऊर्जा प्राप्त करने च सहायता जिहड़ी से मिली सकदी है। सखी, अज दे दिने दा मुख्य उद्देश्य जिहड़ा से आम मनुआ जो ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा ते स्वच्छ ऊर्जा दे प्रति जागरूक जिहड़ा से कीता जांदा है। ते असा सभना जो चाहिदा कि बिजली ते ईंधन दा ज़्यादा या जरूरत नहीं है मनी लिया तो इस्तेमाल जड़ा से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जितना संभव हो अक्षय ऊर्जा दे साधन जो ही अपनाना जड़ा से चाहिए। अक्षय ऊर्जा असां दे देश दे उज्जवल ते टिकाऊ भविष्य वास्ते जड़ी से जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा जो अपनाई करी असा प्राकृतिक संसाधन की जी अस रक्षा करी सकते प्रदूषण घट करी सकते ते आने वाली पीढ़िया वास्ते बेहतर पर्यावरण जो अस बनाई सकते ते भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस असा सबना जो इसी दिशा पर अगे बदने जी अस प्रेरणा दिता तो हूँ असा भी अपनी सखियां कन्ने जड़ा से मनोरंजन की दिशा च अगे बदना ते सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत तलिया सुना अपने रेडियो सेट्स पर एक प्यारा दिया सुरेला दिया लोक गीत

एक बारी फिर स्वागत असदियाँ श्रोता सखियाँ का कार्यक्रम मिंजरा च सखियों अगर असा करे दिया जनासा जड़ी हैं से स्वस्थ हैं तो परिवार जड़ा से भी सही रहिंदा। जी हाँ असा दे समाज च परिवार जो सबना का महत्वपूर्ण जड़ा से मन्या जांदा है। परिवार की सुख शांति बच्चों का विकास ते घरे की प्रगति च महिलाएं की महत्वपूर्ण भूमिका जड़ी से हमेशा रहिंदी। इस खातर बोलिया भी जांदा है कि स्वस्थ नारी समृद्ध परिवार। जैलू महिला शारीरिक मानसिक ते सामाजिक रूप से स्वस्थ रहिंदी तां ही से अपने परिवार के कन्ने कन्ने पूरे समाज के विकास च अपना जरूरी योगदान जड़ा से दे सकती हैं। एक औरत का स्वास्थ्य जड़ा से उसकी व्यक्तिगत जरूरत तो है ही है सखियो, बल्कि परिवार ते राष्ट्र के उज्जवल भविष्य वास्ते भी बड़ा जरूरी है। घरे की औरत एक परिवार की महत्वपूर्ण केंद्र होंगी। असा घरे की जिम्मेदारी जो संभालने के कन्ने कन्ने बच्चों की जी देखभाल जी असा भी असा कर दी ते उन्हें जो शिक्षा ते संस्कार च भी असा जड़ा से उन्हें अपनी जरूरी भूमिका जी असे उन्हें प्रति निभांदी हैं। ते अगर औरत स्वस्थ होंगी अंदर का खुश रहेंगी तो सह होर भी खरे तरीके कन्ने परिवार के सदस्यों की जरूरतों का जड़ा से होर भी खरे कन्ने ध्यान तिना दे पाउंदियां हैं। ते अगर मन ही लिया औरत घरे दी बीमार रहिंदी तो देखा सारा घर जड़ा से अस्त व्यस्त व्यस्त हो जाता, कोई काम जड़ा से घरे दा ठीक तरीके कन्ने नहीं चलता है ना। और औरत जड़ी बीमार होंगी उसको भी पूरा आराम नहीं मिलता, सही तरीके का तेरे से पूरा पोषण नहीं मिलता, इसका असर जड़ा से पूरे परिवार च पाउंदा। तो महिलाएं जो जरूरत होंगी अच्छा स्वास्थ्य रखने वास्ते संतुलित आहार दी, अपने खाने च दाणा जो अनाज हरी सब्जियां मौसमी फल घी दूध दही पनीर सब कुछ जड़ा से शामिल करना चाहिए ते पूरी मात्रा च पानी पीना चाहिए, नींदर जड़ी से भरपूर लेना चाहिए और अपने थोड़ा आराम का भी जड़ा से ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहती का भी ध्यान जड़ा से असं सारी महिलाएं जो रखना सबना का पहले बड़ा जरूरी है। पोषक तत्व कन्ने भरपूर खाना खाना जरूरी होंदा, खासकर गर्भवती महिलाएं ते किशोरियां वास्ते पौष्टिक भोजन का महत्व जड़ा से होर भी ज़्यादा है। ते सारे परिवारां जो ये सुनिश्चित करना चाहिए सखियो कि खाने पीने वाली चीज़ा ते स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो लेकर ही महिलाएं कन्ने कोई भेदभाव जड़ा से घरे च नहीं करना चाहिए। जियां घरे दे बाकी सदस्य खाना खाते महिलाएं जो भी उसी हिसाबे कन्ने जड़े से अपने खाने का ध्यान रखना जरूरी होंदा, कन्ने उसको भी उसी हिसाबे कन्ने जड़ा से खाना खाने जो देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का जड़ा से पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाएं दे स्वास्थ्य वास्ते केवल दिखा पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच जड़ी है सह भी बड़ी जरूरी है। समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, किसी भी बीमारी के लक्षण जो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, स्वास्थ्य की दृष्टि कन्ने जड़ा से बड़ा जरूरी है। बच्चों जो ते महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए ते कन्ने कन्ने मानसिक स्वास्थ्य पासे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। घरे दे बारे दी अनेक जिम्मेदारियां जड़ी है दिखा कई जिम्मेदारियां जड़ी है सखियां जो जड़ी से उठाना पौंदी है ना और निभाना पौंदी। इस कन्ने क्या होंदा कि कई बार महिलाएं जो तनाव हो जांदा, इस खातर ये भी जरूरी है कि घरे दी महिलाएं जो परिवार का साथ मिलना भी जरूरी है। महिलाएं दी भावनाएं दी कदर करनी है ते उन्हां दी परेशानियां जो समझना जड़ा से बड़ा जरूरी है। उन्हां जो पर्याप्त आराम निंदर ते उन्हां जो अपने वास्ते जड़ा से समय निकालना जरूरी है। सहयोग ते सम्मान दा वातावरण जड़ा से हर महिला दे मानसिक स्वास्थ्य जो बेहतर बनाने च मदद करदा है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.

एक बारी फिर स्वागत है सदिया श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। सखियां हुण असां गल करनी है खाने पीने दी। जी हाँ, अज असां गल करनी आलू चने दा मद्दरा बनाने दे बारे च। तो राती क्या करना, तुहां सफेद चने अपने साबे कन्नै भिगोई करी रखी लैने, खरे कन्नै धोई लैने पहले। उसका बाद प्यागा आलू भी उबाली लैने ते काबली चने जड़े न सह भी उबाल नरम होने तक जड़े से उबाली लैने। फिर आलू दे छिलके निकाली करी टुकड़े च जड़े अपने साबे कन्नै कट्टी लैने। एक कढ़ाई पर तुहां क्या करना, जड़ी ऐसे गैस पर रखी देनी, कंदिस च घी पाई देना। घी देसी पाना हो तो देसी पाई लैना, रिफाइंड पाना हो जो भी पाना तुहां अपने साबे कन्नै पाई सकदे, है ना। घी च आलू भी गर्म हो जाएगा तो उस खड़े मसाले जियां कि जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पाई देनी। थोड़ा जिहा पकना देना, दिसो दही, फिर दही पाई देना, हल्दी लून अपने हिसाब के पाई देना, ते दही जो हिलांदे रहना ताकि दही जड़ा से फटे नहीं। जालू दही का घी निकलना लगी पूंगा, खरे कने पकी जाएगा तो उस उबले चने ते आलू जड़े से पाई देने, खरे कने मिलाई लेने करछी कने, तिन्हों जो खरे कने जड़ा से मिलाई लेना। फिर पकना देने थोड़ी देर, जालू कढ़ाई दे किनारे किनारे घी नजरी लगी पौंगा आना, घी छड़ना लगी पौंगी आलू चने, तो समझी लिया आलू चने का मद्दरा जड़ा से बनी के तैयार है। कोई जड़ा थोड़ा इस रसीला बनाते, कोई सुखा सुखा

बनांदे, इस पूरी कन्नै, रोटी कन्नै, चावल कन्नै, कुसी कन्नै जेह्ड़ा से परोसी सकदे। मदरा कुसी भी चीज़ दा बना खाने च जेह्ड़ा से स्वादिष्ट लगदा। मदरा सदे दिक्खे हिमाचली दी जेह्ड़ी से पारंपरिक इक व्यंजन है। कदी कदी दी चीज़ां जेह्ड़ी से जरूर बनाई करी खाना चाहिदी। तां असां भी जेह्ड़ी ऐसे गल्लां बड़ी होई गई है कार्यक्रम पर, कन्नै सुन लैंदे इक होर प्यारा दिया लोक गीत।

इसी लोक गीत कन्ने अज दे कार्यक्रम विच बस इतना ही सखियो। चलदे चलदे तुहां जो दस दिंदे तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया दा। इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अनुमति दिया सखियो। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एक बजने को है आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंध

पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के आवाज़ साथ जो दूसरी आवाज़ है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज़ इतना मृदुल इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही हैं कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोंसले की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज़ सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना ज़रूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज़ है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है यह आपको बताना है।

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त या जिन हालातों से वो गुजर रही हैं उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज़्यादा असरदार और गरिमामयी होती है। बोलने की आज़ादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुँह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखते, बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज़ सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है। कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है। मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आपको

मदन मोहन का संगीत बद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात ज़रूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना, प्यासा फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज़ में।

आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको ज़रूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियाँ बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफ़ी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

बताओ। रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाज़त दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
3: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने

0: गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा।

0: डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ। प्रेम धवन के बोल, संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना

0: चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ आ।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।

लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म का नाम शराबी।

0: हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के,
0: हाय हाय वुरूद इतना,
1: हाँ हाँ वुरूद इतना,
0: उफ ये अदा है ये नशा,
1: हाँ हाँ हाँ।

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज़, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग में पहली बार लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ने का फैसला लिया गया है और सरकारी नौकरियों में सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर लीक मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
1: हमारी सरकार में भर्ती का रिकॉर्ड टूट रहा है, भर्तियां की जा रही है, दिन प्रतिदिन की जा रही है, एक भी पेपर लीक कर दिया बता दीजिए। हमारे एजुकेशन के पेपर हुए, हमारे बैच वाइज भर्तियां हुई, हमारे असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के पेपर हुए, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जो राज्य चयन आयोग से चुनकर आएगा वो निश्चित रूप से, अगर वो टेम्परेरी में तो आने वाले भविष्य में वो रेगुलर भी होगा, क्योंकि हम आउटसोर्स को खत्म करना चाहते हैं, खासकर मेडिकल और एजुकेशन में एसएमसी को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए और टीचरों की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं।
0: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष मुद्दों के साथ सदन में आए और सरकार तथ्यों के साथ जवाब देगी।
1: देखो, पहला मानसून सत्र है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात करें, जल्दी हम चाहेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आए, जो भी फैक्ट्स ये लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे।

0: आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राजीव गांधी की जयंती पर छोटा शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट की ताकत देना उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की बेहतर शिक्षा की सोच के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे और इसी तर्ज पर प्रदेश में 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की आवश्यकताओं को हमेशा संवेदनशीलता से सुना है और प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है। शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा सांसदों की भूमिका पर सवाल उठाने और उन्हें प्रमाण पत्र देने के बजाय प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और ठप पड़े विकास कार्यों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य होने का लाभ मिल रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने आज नाहन में प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी और रोजगार के नाम पर छलावा करने के आरोप लगाए। इस अवसर पर राजू बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को स्थायी रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन 4 साल के बाद भी युवा रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली चल रहे 1,44,000 पद भी खत्म कर दिए हैं। बिंदल ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है।
1: 1,44,000 पद जो खाली पड़े हुए थे, कांग्रेस की सुखविंदर सरकार ने उन पदों को एबॉलिश कर दिया है। जो बेरोजगार है उसका आने वाले समय का रास्ता भी पूरी तरह से इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने बंद कर, इसलिए बेरोजगार सड़कों पर है। 4 साल के बाद आज वो अपने आप को खाली हाथ महसूस करता है।
0: विधायक अजय सोलंकी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हजारों कामगारों को मिल रहा है। नाहन में आज उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बोर्ड की ओर से करीब 55 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है जनगणना 2027। सितंबर 2026 से हिमाचल में होगी शुरुआत। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
3: जनगणना 2027 को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर जनगणना के दौरान जुटाई जाने वाली सूचनाओं और प्रश्नावली का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है। इस बार की जनगणना पिछली गणना की तुलना में अधिक व्यापक होगी। इसमें केवल आबादी की गिनती ही नहीं बल्कि लोगों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, प्रयास, दिव्यांगता, आवासीय स्थिति और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज की जाएंगी। जनगणना 2027 देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जातिगत आंकड़ों का संग्रह किया जाना है। प्रश्नावली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ जाति से संबंधित विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इससे देश और प्रदेश में विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक जनसंख्या स्थिति का आकलन करने में मदद मिलने की कहां से वर्तमान स्थान पर आया। प्रश्नावली में व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े कई सवाल शामिल किए गए हैं। इनमें व्यक्ति का नाम, परिवार के सदस्यों से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और आयु, वैवाहिक स्थिति तथा विवाह के समय आयु जैसी जानकारी ली जाएगी। पति या पत्नी का नाम, शैक्षणिक योग्यता और धर्म से संबंधित विवरण भी दर्ज

0: बांटा जाएगा। इसके साथ ही व्यक्ति की मातृभाषा और अन्य भाषाओं के ज्ञान तथा उनके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। जनगणना में केवल वही दर्ज नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है या नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक गतिविधि और रोजगार की प्रकृति की भी जानकारी ली जाएगी। कर्मचारी वर्ग, व्यवसाय, स्वरोजगार, काम की तलाश और रोजगार के लिए दूसरे स्थान पर जाने जैसी स्थितियों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे देश में रोजगार के स्वरूप और कामकाजी आबादी की स्थिति की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। प्रवास से जुड़ी जानकारी भी जनगणना का अहम हिस्सा होगी। व्यक्ति के वर्तमान निवास और स्थायी निवास के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि व्यक्ति कब और कहां से वर्तमान स्थान पर आया, उसके प्रवास का कारण क्या था और उसका स्थायी निवास स्थान कहां है। इन आंकड़ों से देश और प्रदेश में लोगों के आवागमन, रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए होने वाले प्रवास की स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी। जनगणना में दिव्यांगता से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है। इसके माध्यम से दिव्यांग आबादी की संख्या और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। इससे दिव्यांगजनों के लिए भविष्य की योजनाओं और नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिल सकती है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। घर घर जाकर जानकारी दर्ज करने के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन और डिजिटल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। इससे आंकड़ों को दर्ज करने के साथ साथ उनके प्रबंधन, निगरानी और संकलन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन बनाया जा सकेगा। डिजिटल माध्यम से जनगणना के आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों और बर्फबारी को देखते हुए जनगणना का कार्यक्रम देश के कई अन्य राज्यों से अलग रखा गया है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में शुरू की जानी है। पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यहां जनगणना की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग समय पर संचालित की जाएगी। जनगणना में मकान और परिवार से जुड़ी जानकारी को भी महत्व दिया गया है। व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के साथ उसके परिवार, आवास स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधि, प्रवास और सामाजिक परिस्थितियों को एक साथ दर्ज किया जाएगा। इस तरह जनगणना 2027 का उद्देश्य केवल जनसंख्या का आंकड़ा जुटाना नहीं, बल्कि देश की व्यापक सामाजिक और आर्थिक तस्वीर तैयार करना है।
1: प्रभा शर्मा से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, जिसका विषय था जनगणना 2027 सितंबर 2026 से हिमाचल में होगी शुरुआत। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
3: उसमें इन्हें महारत हासिल है।
4: बिल्कुल,
3: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
4: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज़्यादा जिज्ञासा ही थी।
3: बिल्कुल, ज़्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्यौहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएँ होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीज़ों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देखकर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
4: बिल्कुल,

0: संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीज़ें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियाँ सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियाँ ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
1: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
0: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
1: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर। तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहाँ से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहाँ बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
0: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
1: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिया था। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
0: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ, शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
1: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले। हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपये और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपये और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपये मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपये दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियाँ लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोक चार संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीज़ों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तलीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती हैं।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीक में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पर ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीज़ें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है। जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी,
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती हैं जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ,
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
0: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने

0: का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत ज़रूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल ज़रूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियाँ अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहाँ की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
0: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सीडैक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।
0: बिल्कुल, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी ज़रूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत ज़रूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए, फिलहाल जो हम

0: हाँ चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ हैं वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ हैं, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियाँ होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, ज़िंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, ज़िंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे

0: काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें। और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, ज़रूरत और संतुलन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज़ आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, ज़रूरत नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: हाँ, कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, हाँ, या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी ज़रूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी ज़िंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद ज़रूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दें और मन को संतुष्टि भी दें।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: हैं?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ही बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज़ धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुँचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े हैं, बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए, जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो हैं वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी ख़राब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बंद कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं, तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपने ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी अभी भी साइट चलती है, तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा

0: पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुहाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्र पर संगीत उस पर 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आज।
0: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
0: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़े है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी। प्रेम
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रहे।

0: हूँ वी पूनम नायडू।
1: और बताइए कैसी हैं आप?
0: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
1: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
0: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
1: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
0: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
0: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
1: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
0: जी
1: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
0: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
1: जी, और क्या शौक हैं आपके?
0: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा लगभग 60 साल से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
1: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
0: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
1: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
0: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
1: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
1: बताइए बिल्कुल।
0: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, मैं आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी,
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह, ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
0: जी।
1: हम लोगों के क्षेत्र में धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना, ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कर्णी शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा।
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल। तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है।
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूं मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है, तिल्ली खाते हैं, वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं खेत के चारों तरफ, जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जन

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी, और आपके कार्यक्रम विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है, तो एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम हेलो फरमाइश सखी सहेली, और वो आते नामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी क्षेत्र लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए, अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है, और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलती है कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना, तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है। तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा प्यार की फिल्म लगा।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार। बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम हम सारा कपड़ा ही सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं। तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बकायदा कोई कोर्स
1: अभी।
0: किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा
0: अच्छा,
1: मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह।
1: मैं
0: इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही
0: जी,
1: करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और आसाम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामेका टेम्पल, वो भी
0: जी
1: ठीक है, और
0: जी
1: कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
0: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288, यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की और क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कहा है कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। महाविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधार कर इसे दोबारा जारी किया गया है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थीं और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। बांग्लादेश में 35 साल में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। सांसद देश के 23वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग जातीय संसद में ओपन बैलेट से हो रही है। इस चुनाव में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद से है। ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बांग्लादेश के चुनाव के मुताबिक नतीजे आज रात आने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे पाकिस्तान का यह दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति जेएएसी ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The India-Japan Defense Ministers meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defense technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Minister Rajnath Singh said, Two leading democracies in Asia, India and Japan, share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. The minister said a close alignment between India's Mahasagar vision and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before.
4: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries, but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.
3: Mr. Koizumi expressed appreciation for the condolence to all those affected by the earthquake in Kumamoto Prefecture.
5: Laksha Mantri Ji, Namaste.
6: I would like to express my appreciation for the support provided by Indian Navy for the medical emergency which took place on the JMSDF vessel. This symbolizes our relationship of cooperation that when we have trouble, we help each other.
3: The 31st South Zone Council meeting concluded in Mahabalipuram near Chennai under the chairmanship of the Home Minister Amit Shah. The meeting gave an opportunity to the chief ministers and senior officials to engage among themselves to discuss shared priorities and issues concerning the progress, development and interests of the region. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar, Kerala Chief Minister Satishan, Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka and Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu attended the meeting. Lieutenant Governor of Puducherry, Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands, Administrator of Lakshadweep and senior officials of various ministries also attended the meeting. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC civil services examinations and the food safety officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they could not be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission and fixed 15th of September for the next hearing. Prime Minister Narendra Modi has said that India's BRICS chairship is advancing sustainable development through people-centric climate action. Sharing an article written by Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav, the Prime Minister said that India's progress in reducing emissions intensity and expanding non-fossil energy capacity reinforces a sustainable and green approach. Mr. Modi also highlighted the government's focus on measures such as sustainable lifestyles, afforestation, circular economy and community based adaptation. Bangladesh's presidential election is underway with lawmakers voting to elect the country's 23rd president in the first contested poll for the post in 35 years. Voting is being held through an open ballot at Jatiya Sangsad with 349 lawmakers eligible to vote. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match at the AFIH Hockey World Cup at Wagner Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. Indian Standard Time. In badminton, India's women's doubles duo of Thresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।

लता मंगेशकर के गाए इसी भजन के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में। जी हाँ, हम हाजिर हैं। आज है बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार, और थर्सडे को हमारा सेगमेंट रहता है रोजगार समाचार, और साथ ही हम बातें करते हैं विज्ञान जगत की कि क्या कुछ हो रहा है। तो बातें होंगी, जानकारियां भी होंगी, लेकिन कार्यक्रम का अब हम आगाज़ करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और हाजिर हैं अब हम रोजगार समाचारों के साथ। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC द्वारा जारी नवीनतम भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती 2026 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के 410 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान सहित अनेक विषय शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त 2026 कर दी गई है। आयोग ने इन पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा सितंबर 2026 के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने का प्रारंभिक कार्यक्रम भी जारी किया है।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं और हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला के 734 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अवश्य देखनी होगी। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। आवेदन पत्र भरने से पहले आधिकारिक विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र और अन्य सूचनाओं के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखें। युवा दोस्तों, यदि आप सरकारी सेवा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो समय रहते आवेदन करें और नियमित तैयारी जारी रखें। सही जानकारी, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम युवा मंच अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। युवा दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार समय समय पर विभिन्न विभागों में युवाओं के लिए भर्ती अधिसूचनाएं जारी करती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, वन विभाग, बिजली बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रदेश के सभी जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जिला रोजगार कार्यालय युवाओं का पंजीकरण करते हैं तथा समय समय पर रोजगार मेलों को और कैंपस इंटरव्यू का आयोजन भी किया जाता है। जो युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण और उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, अन्य संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचनाओं पर नजर रखें, साथ ही अपने जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अवश्य कराएं। अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के अनुसार रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की नियमित तैयारी करें, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें, किसी भी भर्ती से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ें और अफवाहों से बचें। तो कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और प्यारा सा गीत आप सब दोस्तों के लिए।
3: Wow. Yeah.

एक बार फिर से स्वागत आप सभी युवा दोस्तों का अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ युवा दोस्तों, अब आज के सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं रोजगार समाचारों के साथ साथ विज्ञान जगत की कुछ खबरें भी। आइए जानते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण और नवीनतम उपलब्धियों के बारे में। समुद्र की गहराइयों में 31 नई प्रजातियों की खोज की गई है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने ब्राज़ील के तट के पास समुद्र की गहराइयों में अभियान चलाकर 31 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की है। इनमें नई जेलीफिश, कॉम्ब जेली और अन्य दुर्लभ जीव शामिल हैं। इस अभियान में अत्याधुनिक पानी के भीतर चलने वाले रोबोट और 3D इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का विशाल हिस्सा अभी भी अनदेखा और रहस्यमय है। हाल ही में हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन किया। इस शोध से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और ज्वालाओं और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई AI आधारित तकनीक विकसित की है, जो शरीर में छिपी हुई कैंसर कोशिकाओं की पहचान पहले की तुलना में अधिक सटीकता से कर सकती है। भविष्य में इससे कैंसर का जल्दी पता लगाना और उपचार आसान हो सकेगा। इसरो की नई तैयारी। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान मिशन के लिए भारत में ही आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित कर रहा है। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को देश में ही उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा और भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं और मजबूत होंगी। मानव मस्तिष्क पर नई खोज। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव मस्तिष्क की एक एक तंत्रिका कोशिका पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल गणनाएं कर सकती है। युवा दोस्तों, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। आज विज्ञान हमारे मोबाइल, इंटरनेट, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रहा है। यदि आप जिज्ञासु हैं, नए प्रयोग करना चाहते हैं तो और सीखने की इच्छा भी रखते हैं, तो विज्ञान आपके उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार बन सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। शामिल करते हैं चलते चलते एक और प्यारा सा ये म्यूजिकल ट्रैक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मुझा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा शून्य लागत प्राकृतिक खेती। शाम 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:15 सुनेगा कार्यक्रम सबरस और रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनिएगा अभिनेत्री भूमिका चावला पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम रंगे गजल प्रसारित किया जाएगा। हिमाचली गीत और लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। आप प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम सुबह सुहानी और 8:30 पर गाने सुहाने, ये कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30।

विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:59 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और कार्य समिति पार्टी का कार्यक्रम तय करेगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र के बाद वे दिल्ली में केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला अगर प्रदेश के हक में आता है तो हिमाचल को हर वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय होगी।
1: केंद्र सरकार के बाद सेशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो मानसून सेशन के बाद हम जाएंगे, जो अधिकार की बात होगी बात करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा बीबीएमबी का एक फैसला आना है जिसमें अगर किशाऊ बांध पर आगे बढ़ना है तो उस फैसले का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अगर वो फैसला आता तो हर साल हमें 1500 करोड़ रुपए की और आय होगी।
0: प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 21 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान आयोजित होने वाली बैठकों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में विधानसभा के प्रभावी संचालन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विचार विमर्श किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में स्काउटिंग व गाइडिंग का दायरा बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने आज शिमला में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्काउटिंग व गाइडिंग से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना और जिम्मेदारी व सेवा की भावना विकसित होती है। रोहित ठाकुर ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक अधिकृत संस्था है जिसके बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी देने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला का 78वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि लगभग 8 दशकों की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में सीपीआरआई ने उत्कृष्ट अनुसंधान, तकनीकी नवाचार व विकासोन्मुखी विस्तार गतिविधियों के माध्यम से देश में आलू अनुसंधान व उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों व वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों के किसानों तक पहुंचा है।
2: आलू के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट

0: काम किया है और आज जो हम विभिन्न प्रकार की वैरायटीज आलू की देख रहे हैं, आज हम दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश बने हैं। इस दिशा में इतनी लंबी उपलब्धि के लिए, इतनी लंबी जो छलांग आलू के अनुसंधान क्षेत्र में हमने लगाई है, उसमें CPRI शिमला की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विद्युत, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वे आज क्षेत्र की कोटलू ब्राह्मणा पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए नए 33 KV उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें बड़े ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कांगड़ा जिला इकाई ने छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आज धर्मशाला में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ABVP कांगड़ा विभाग के संयोजक अंकित गौड़ ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में फीस में भारी बढ़ोतरी कर सरकार ने छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला है।
2: जो फीस वृद्धि पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो प्रदेश की शिक्षा विरोधी सरकार है, ये जो छात्र विरोधी सरकार है, प्रदेश का जो गरीब विद्यार्थी है उससे पढ़ने का अधिकार जो है इस प्रदेश की वर्तमान सरकार ने छीना है। विद्यार्थी परिषद जिला कांगड़ा ये आग्रह करता है प्रदेश की सरकार से, ये चेतावनी भी देता है कि जल्द से जल्द ये जो फीस वृद्धि का फरमान है, इस फरमान को जो है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर शाम के 6:06 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की आवाज़ में। सूरज फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भीगी पलकें फिल्म से ये दो गाना। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
2: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
5: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
4: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
5: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
4: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

एक बार फिर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुपमा और भूपिंदर सिंह की मिलीजुली आवाजों में। संगीत दिया था रघुनाथ सेठ ने और बोल लिखे थे विनोद पांडे ने। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं ललकार फिल्म से ये दो गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की मिलीजुली आवाज़ों में। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: गले लग जा, ये इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रेनू मन कोटिया के साथ आकाशवाणी धर्मशाला से।
1: तेरा

0: Sorry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Need the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 और 35 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां।

कार्यक्रम मौजां कराईंदियां मैं हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस लोक भजन के साथ।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी।

0: यही है टाइगर की गारंटी।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa. मुझा ग्राइंदियाँ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शून्य लागत प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, योजना ये किसानों को कम लागत में रसायन मुक्त और टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक कृषि पद्धति है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खेती की लागत को लगभग शून्य तक लाना और रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करना है।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शून्य लागत प्राकृतिक खेती के बारे में। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि खेती की लागत को लगभग शून्य तक लेकर आया जाए और रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता जो है वो कम की जाए और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करके हम सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन का भंडारण करें, क्योंकि ये सबके लिए ही ज़रूरी है। आज के समय में किसानों की आय में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। कीटनाशक दवाइयाँ ये सब, इनका छिड़काव करने से हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है, इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण को भी मद्देनज़र रख के ये कार्य करने हैं। बीज उपचार के लिए देसी गाय के गोबर

गौमूत्र चूना और मिट्टी से तैयार घोल बनाकर एक बीजामृत बनाना है और जीवा अमृत में मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए देसी गाय के गोबर गौमूत्र गुड़ बेसन और मिट्टी से तैयार जैविक घोल, ये भी बहुत ही ज़रूरी है और सही है। ये खेत की मिट्टी की पत्तियों फसल अवशेषों आदि से ढककर नमी बनाए रखना, जी हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी पत्ते होते हैं, जो भी हमारा फालतू का जो मतलब कचरा टाइप होता है, उसको भी हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पौधों की जड़ों तक हवा और नमी का संतुलन बनाए रखना, इससे जो है वो पौधों की जड़ों तक हवा भी पहुंचती है और नमी भी मतलब बनी रहती है। मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ती है और रसायन मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण फसल जो वो है वो तैयार होती है। तो कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य में यह अभियान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से भी आगे बढ़ाया गया है। यह योजना किसानों को कम लागत, अधिक टिकायु और पर्यावरण अनुकूल खेती की दिशा में प्रेरित करती है। ये जो हमारी प्राकृतिक शून्य लागत पर जो हम खेती करते हैं, तो चलते चलते हम बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। शामिल करते हैं एक और प्यारा सा मीठा सा ये लोकगीत विद्या चोपड़ा का गाया हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांक राइंदिया। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक कृषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भी भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड

0: The 7.4 magnitude earthquake had killed 319 people and left 260 missing as of this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम किसान वाणी रिले किया जाएगा।
2: इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। समय है कार्यक्रम किसान वाणी का।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम में मैं हूँ योगिता शर्मा
7: और मैं हरी सिंह चंदेल।
6: किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे।
7: किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से मंगलवार, वीरवार और शनिवार को साय 7:10 से 7:45 तक आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा और इसे उसी समय पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा।
8: तो आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
6: और हरि सिंह जी, आप कैसे हैं?
7: योगिता जी, मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करते किसान और बागवान भाई बहन वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्यों में जो है व्यस्त होंगे।
6: जी
7: योगिता जी, जैसे कि अगस्त का महीना चला हुआ है तो इस समय हमारे किसान भाई मक्का और धान जैसी खरीफ फसलों की निराई गुड़ाई कर सकते हैं।
6: किसान भाइयों, अगर बात करें सब्जी की तो देखिए मध्यवर्तीय क्षेत्रों में अगेती मटर, मूली, पालक, मेथी और गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार आप इन दिनों कर सकते हैं या उनकी बुआई भी इन दिनों आप कर सकते हैं। अगर बात करें सेब बागीचों की तो सेब की तुड़ाई और प्रबंधन में निचले व मध्य क्षेत्रों में सेब की फसल पक चुकी है, इसलिए समय पर तुड़ाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का कार्य आप जरूर कर लें और मॉनसून की अनुकूल नमी का लाभ उठाते हुए नए फलदार पौधों का रोपण आप जरूर करें।
7: जी तो योगिता जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला इस कार्यक्रम में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
6: जी हरि जी, काम की बातों के अंतर्गत आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे गुलाब की व्यावसायिक खेती इस विषय पर। पहाड़ी गीतों से हम अपने किसान श्रोताओं का मनोरंजन भी करवाएंगे।
7: जी और जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा बदलते मौसम का फलदार पौधों एवं वृक्षों पर प्रभाव, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। इस विषय पे जानकारी देंगे डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर और उनसे बातचीत करेंगे सुरेश चंद।
6: जी तो देखिए हरि जी, बात हुई आज के मुख्य आकर्षणों की और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गुलाब की व्यावसायिक खेती इस विषय पर।
7: जी किसान भाइयों, फूल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि आज के समय में फूलों की खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का साधन भी

0: बन सकती है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु, ऊंचाई और प्राकृतिक परिस्थितियाँ कई प्रकार के फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। गुलाब की खेती शुरू करने के लिए खेत का चुनाव कैसे करें, कौन सी किस्में लगाएं, पौधे कब लगाएं, कितनी दूरी पर रखें, खाद और सिंचाई कैसे करें, पौधों की कटाई छटाई कैसे करें और गुलाब के पौधों को जो है रोग और कीटों से बचाव कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात की उगाए गए गुलाब को बाजार तक कैसे पहुँचाएं।
1: जी किसान भाइयों, गुलाब भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। गुलाब का उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह, होटल, रेस्टोरेंट, सजावट, गुलदस्ते, फूलों की माला, इत्र और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है और यही कारण है कि गुलाब की मांग पूरे वर्ष भर बनी रहती है। हमारे प्रदेश में गुलाब की खेती विशेष रूप से उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ जलवायु उपयुक्त हो और पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। और किसान भाइयों, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि गुलाब की व्यावसायिक खेती एक जैसी नहीं होती, यानी कि गुलाब की व्यावसायिक खेती आप खुली जमीन पर भी कर सकते हो और पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में भी आप जो है गुलाब की खेती कर सकते हैं। किसान को सबसे पहले अपने क्षेत्र की ऊंचाई, तापमान, मिट्टी, पानी और बाजार की स्थिति को देखना चाहिए। अगर खेत ऐसी जगह पर है जहां पर्याप्त धूप मिलती है, पानी की सुविधा है और बाजार तक फूल पहुंचाना आसान है तो गुलाब की व्यावसायिक खेती एक अच्छा विकल्प बन सकती है।
0: किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि गुलाब की खेती क्यों करें, गुलाब की खेती के क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला है कि इसकी मांग जो है वर्ष भर बनी रहती है। दूसरा, एक बार अच्छी तरह स्थापित पौधे से कई वर्षों तक उत्पादन जो है लिया जा सकता है। गुलाब को खुले खेत में भी उगाया जा सकता है और संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस में भी उगाया जा सकता है। फूलों के अलावा गुलाब की पंखुड़ी और अन्य उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, केवल पौधे लगा देना ही व्यावसायिक खेती नहीं है। व्यावसायिक खेती का मतलब है अच्छी योजना, सही किस्म, अच्छी देखभाल, सही समय पर कटाई और बाजार। गुलाब की सफल व्यावसायिक खेती के लिए इन पांचों बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: किसान श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाब लगाने के लिए खेत किस तरह से आप तैयार करें। गुलाब की अच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त धूप चाहिए, इसलिए ऐसा खेत चुनें जहां दिन के अधिकांश समय अच्छी धूप आती हो। बहुत अधिक छायादार स्थान पर गुलाब के पौधे कमजोर हो सकते हैं और फूलों की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित हो सकती है।
0: जी, अब बात करते हैं कि गुलाब की व्यवसायिक खेती के लिए मिट्टी कैसी हो। तो गुलाब की खेती के लिए उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली और जैविक पदार्थ से भरपूर मिट्टी अच्छी रहती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी जो आपने कैसे करनी है। तो पौध रोपण से पहले खेत की अच्छी तरह सफाई कर लें, उसमें से सारे खरपतवार निकाल लें, खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें, जहां आवश्यक हो वहां जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य मिला लें। क्यारियां बनाते समय यह ध्यान रखें कि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके।
1: जी, और किसान भाइयों, बात करते हैं कि गुलाब की खेती के लिए हमने कौन कौन सी किस्मों का चयन करना है। तो किस्म हमेशा आप वही चुने जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले और जो आपकी खेत की मिट्टी के लिए उपयुक्त हो। इस बात का जानना भी किसान भाइयों जरूरी है कि आप कट फ्लावर यानी डंडी वाले फूल लगाना चाहते हैं या आप गुलदस्ते और सजावट के लिए फूल उगाना चाहते हैं। इन्हीं सभी उद्देश्यों को देखकर ही जो है किस्मों का चुनाव किया जाता है।
0: किसान भाइयों, बात करते हैं पौधरोपण की। तो हिमाचल प्रदेश में गुलाब लगाने का सही समय क्षेत्र की ऊंचाई और स्थानीय मौसम पर निर्भर करता है।
1: किसान भाइयों, बात करें अगर पौधे लगाने की दूरी के बारे में तो गुलाब की दूरी उसकी किस्म और खेती की पद्धति पर निर्भर करती है, इसलिए व्यावसायिक किस्म के अनुसार आप उचित दूरी रखें। किसान पौधे लगाने से पहले खेत का नक्शा अवश्य बनाएं। किसान भाइयों, बात करते हैं गुलाब की खेती के लिए खाद और पोषण प्रबंधन की। गुलाब एक लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है, इसलिए पौधों को संतुलित पोषण देना जरूरी होता है। सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करवाएं। जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की संरचना सुधारने में मदद करता है। किसान भाइयों, गुलाब की खेती के लिए आप किस्में ले सकते हैं। लाल गुलाब के लिए आप ले सकते हो फर्स्ट रेड, ग्रांड गेला, पैशन और ग्रांड पिक्स, और पीले गुलाब के लिए आप ले सकते हो गोल्डन गेट, गोल्ड स्ट्राइक, पेपिलोनिया गोल्ड। और किसान भाइयों, अगर आप सफेद गुलाब उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस्में ले बियांका, वाजीनिया, हॉलीवुड, और गुलाबी गुलाब के लिए नोबलेस पिंक, प्रेटी वुमन, रेवेल और स्वीटनेस जैसी किस्में आप उगा सकते हैं।
0: गुलाब की व्यावसायिक खेती में प्रूनिंग यानी कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण काम है। पुरानी सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं को हटाना जरूरी होता है, इससे पौधे को नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है। लेकिन प्रूनिंग का सही तरीका किस्म और उत्पादन उद्देश्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि कटाई के बाद प्रबंधन जो है आपने कैसे करना है। फूल खेत से निकलने के बाद भी किसान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, इसलिए कटे हुए फूलों को साफ रखें, उन्हें अनावश्यक दबाव से बचाएं, पैकिंग जो है अच्छी होनी चाहिए और फूलों को बाजार तक जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। कट फ्लावर के मामले में समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी फसल यदि गलत तरीके से पैकिंग या परिवहन के कारण खराब हो जाए तो किसान को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने प्रबंधन का जो है विशेष ध्यान रखना है
1: जी।
0: तो योगदा जी, ये तो बात हुई कि आप गुलाब की व्यावसायिक खेती जो है कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे
1: जी। हरि सिंह जी, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत
0: जी।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। तो योगिता जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण। विषय है बदलते मौसम का फलदार पौधों एवं वृक्षों पर प्रभाव। डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर से बातचीत करेंगे सुरेश चंद
1: जी।
2: किसान भाई और बहनों नमस्कार, हम आपके लिए कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर आते हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े विषय हो, पशुपालन से जुड़े हो या बागवानी से जुड़े हो, और हम जो है विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं और उस बातचीत को आपसे साझा करते हैं। आज स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं, बदलते मौसम का फलदार पौधों व वृक्षों पर प्रभाव
3: जी,
2: ये विषय बहुत ज्वलंत है। आजकल भी देखा जाए तो देखिए मौसम किस तरीके से जो है अपनी करवटें बदल रहा है। कभी बारिश होती है, बल्कि बारिश ज्यादा होती है, धूप कम खिली होती है। इसका फलदार पौधों और वृक्षों पर प्रभाव जो है उसको आप कैसे देखते हैं?
3: सुरेश चांडिल जी, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया है, क्योंकि मौसम में फर्क जब आता है तो कभी फेवर मिलता है, कभी नुकसान होता है, क्योंकि बरसात तो होनी चाहिए। और खासकर जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, सेब में जो फ्रूट साइज एक्सपेंशन होता है वो जुलाई के महीने में ही ज्यादा होता है
2: जी।
3: और जहां तक मौसम खराब की जो बात चली है, वो हमारा जो मई और जून में वेट पीरियड गया है, इसने एक तो गर्मी होने नहीं दी मिट्टी में भी नहीं, एटमॉस्फेयर में भी, जिससे साइज रुका है। और दूसरा, जो हमारे जो नुकसान देने वाले बीमारियां हैं या कीट है, वो ज्यादा फलते हैं ऐसे मौसम में, जिससे कि लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक तरह से विजिलेंट रहना पड़ता है। और क्योंकि हमारी मॉडर्न बागवानी है, केमिकल बेस्ड भी हो चुकी है बागवानी, तो लोगों का रुझान भी अब इस तरफ रहता है, तो ज्यादा नुकसान होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस थ्योरी पे काम करता हूँ कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़नी चाहिए
2: जी।
3: तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। लोगों का जो मुनाफा है किसी भी प्रकार के फल और बागवानी या सब्जियों में, वो घट रहा है
2: जी।
3: जहां तक मैं सब्जेक्ट लूंगा बीमारियों का, दो बीमारियां प्रमुख रूप से देखने को मिल रही है
2: जी।
3: एक है पुराना एप्पल स्कैब और दूसरा जो लगातार कुछ सालों से हमारे सेबों के पेड़ों के ऊपर पीली पत्ती होना, मार्सोनिना ब्लॉच।
2: ये जो बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, ये क्या जो मौसम जिस तरह से बदल रहा है ज्यादा हो रही है?
3: बीमारियों का एक सीधा सा जो हम कोरिलेशन देखते हैं कि अगर वेट सीजन जाता है या गीला मौसम जाता है तो बीमारियां ज्यादा आएगी, अगर शुष्क जाएगा तो कीट ज्यादा आते हैं।
2: तो स्वाभाविक है, इस बार जिस तरह से बारिशें चल रही है उससे तो बीमारियां ज्यादा,
3: हाँ बीमारियां ज्यादा आएगी। और कई इलाकों में स्कैब का काफी प्रकोप है, क्योंकि मेरे पास भी कई लोग पूछते हैं, तो स्कैब का काफी प्रकोप है। ये कुछ सालों के बाद दोबारा से आने शुरू हुई है, कारण वही है कि मौसम इसके फेवरेबल जा रहा है। तो मैं केवल स्कैब के बारे में, क्योंकि ये मेरा विषय पिछले 40-42 साल से रहा है और मैं अभी भी इसको स्टडी करता हूँ और मॉनिटर करता रहता हूँ, तो मैं केवल बागवानों के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्प्रे तो आपको करनी ही पड़ेगी
2: जी।
3: और केवल स्कैब में ये जरूरी है कि आप अपने बगीचे को मॉनिटर करते रहें
2: जी।
3: अगर आपके बगीचे में स्कैब आ गया है तो स्प्रे जरूर करनी है, अगर पड़ोस में भी आ गया है तो भी आप जरूर करें।
2: यानी कि अगर पड़ोसी के बगीचे में स्कैब आ गया है तो ये पक्का है,
3: तो
2: कि
3: ये पक्का है कि उस एरिया में स्कैब आ गया है
2: जी,
3: है नहीं
2: जी।
3: तो मैं केवल इस स्कैब के लिए एक और कहना चाहूंगा कि जब तक तो शुरुआती महीने होते हैं मार्च अप्रैल मई, तो आप जो पाउडर फॉर्म में भी जो दवाई आती है वो प्रभावकारी होती है। अगर एक बार बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ तो जो ऑयल फॉर्म में जो दवाई आती है उसका इस्तेमाल करें आप, बड़े सही, और लोगों ने करना शुरू कर लिया है
2: जी।
3: लोगों के लिए स्कैब कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सीरियस नहीं है कि लोग इसको कंट्रोल करना सीख चुके हैं।
2: लेकिन अब तो जैसे है, तो आपने मई जून की बात की, अब तो जुलाई आ गया है, तो ऐसे में क्या निदान
3: है? स्कैब आनी थी वो आ गई है।
2: अच्छा,
3: अब जो स्कैब आएगी, सेकेंडरी स्कैब जो फ्रूट के ऊपर भी आती है, पत्तियों के ऊपर भी आती है, इसके लिए केवल आपने जो ऑयली टाइप जो फंजीसाइड्स आपके पास होते हैं उसको करते रहिए, ताकि वो, उसको हम कहते हैं क्यूरेटिव स्प्रे। क्यूरेटिव का मतलब है कोई इन्फेक्शन अब आगे को आएगा उसको आप उस स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं और जला सकते हैं।
2: यानी कि जो पाउडर वाले फंगीसाइड्स है उसका,
3: पाउडर वाले अब बरसात के मौसम में काम नहीं करेंगे, उल्टा दुष्प्रभाव चढ़ेंगे, जैसे रस्टिंग हो जाती है उस तरह की समस्या आती है। अब केवल लिक्विड टाइप के जो फंजीसाइड है उसको स्प्रे करें
2: जी।
3: ये मेरा संदेश।

0: एक बागवानों के लिए कि ये चीजें समझना आपको बड़ा जरूरी है। हर कोई दवा हर समय या बार बार ना करे, केवल ये चीज समझे कि पाउडर वाली जब शुरुआती स्कैब होती है उसको कंट्रोल करे। जब एक बार स्कैब एरिया में आ गई है या आपको भी अंदेशा के मेरे भी आ सकती है,
1: जी
0: तो जितने भी ये हाई पोटेंसी केमिकल है जिसमें सिस्टेन भी है, स्कोर है, पेनकनाजोल है, इस तरह की जो भी दवाइयां हैं उसको स्प्रे करे। उसका मतलब होता है कि आपने बीमारी को काटना है वहीं का वहीं जहां वो फैल रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: और जो मार्सोनिना ब्लॉच है ये थोड़ी टिपिकल बीमारी है
1: हाँ, ये
0: इसको,
1: आपने दूसरी बीमारी की बात
0: हाँ
1: की है।
0: ये थोड़ा, ये भी
1: जी
0: इसका प्रकोप अब बढ़ेगा, जुलाई और अगस्त में बहुत तेजी से फैलेगा
1: जी
0: क्योंकि मौसम उसका साथ दे रहा है।
1: जी
0: इसका ह्यूमिडिटी से ज्यादा संबंध है, नमी पड़ी है
1: जी
0: तो उस नमी का फायदा ये कीटाणु लेता है और ये बड़ा जल्दी से फैलता है। ये इतना तेजी से फैलता कि एक बार आपके बगीचे में ये एंटर कर गया है तो
1: जी
0: एक रात में भी आपको सुबह आपको नजर पत्तियां पीली ही नजर आएंगी। इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है।
1: जी
0: कुछ दवाइयां हैं कि वो पीली को झाड़ देते हैं, जो बाकी बची उसको फिर स्वस्थ रखते हैं। वो आपके स्प्रे शेड्यूल में रिकमेंडेड है। वो बार बार आप किसी भी एक्सटेंशन वर्कर या यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं कि हमें अपना स्प्रे शेड्यूल कैसे बदलना है।
1: अच्छा, इसका जो मार्सोनिना ब्लॉच है, इसका जैसे इस बार पत्तियां मान लो झड़ गई, पीली पड़ गई, तो
0: जी,
1: इसका अगले सीजन पर भी फर्क पड़ता होगा।
0: अगले सीजन में पड़ता है क्योंकि ओवरऑल हेल्थ में प्रॉब्लम तो आती है कि जो अब जो पत्ती है ये खाना भी पौधे के लिए बनाती है।
1: जी
0: सेब जो फ्रूट लगाए उसके लिए भी खाना बनाती है। जो फ्रूट का जो स्वाद है, रंग है, इन्हीं पत्तियों के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये झड़ गई तो वो सब प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए इन पत्तियों को बचाना बहुत जरूरी है जब तक कम से कम आपकी फसल पेड़ पे है।
1: जी
0: तो आप इसके चौकन्ने रहिए और बार बार अपने बगीचे को जांचते रहिए कि आया है तो एक पत्ती भी अगर आपके किसी पेड़ में नजर आई तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि
1: जी
0: मेरे बगीचे में वो मौसम बन चुका है और बीमारी चलनी शुरू हो गई है।
1: जी
0: क्योंकि इस बीमारी का जो एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इनक्यूबेशन होता है इन्फेक्शन होने से सिम्टम बनने तक, ये
1: जी
0: बहुत लंबा है।
1: अच्छा
0: और इसको जब पौधे के अंदर एक खुराक होती है जिसको हम इथिलीन कहते हैं,
1: जी
0: जो फ्रूट को मैच्योर करता है, वही ये कीटाणु मांगता है। जब वो बनना शुरू हो जाता है 60 दिन के बाद तो आपकी पत्तियों में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इस तरह से मॉनिटर करें कि आपकी जो पत्ती की जो उम्र है अगर 60 साल हो रही तो स्प्रे देना शुरू करें आप। मेरी ये वार्निंग है, ये रॉ रिकमेंडेशन है मेरी कि अब 1,20,000 फार्मर है, उनकी अब अपनी समझ है, उनकी अपने अपने रिसोर्सेज है,
1: जी
0: पर मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि,
1: बिल्कुल
0: और ये दोनों बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स है, ये
1: जी
0: हमारी बागवानी को कई सालों से प्रभावित कर रही है, जिसमें क्वालिटी ऑफ फ्रूट भी कम हो रहा है,
1: जी
0: फ्रूट प्रोडक्शन भी कम हो रही है। हम इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि हमारी प्रोडक्शन कम क्यों है,
1: जी
0: हमारी क्वालिटी कम क्यों है, पर लोगों ने, जो बागवानों ने कंसेप्ट लिया है वो स्प्रे का ले लिया उस क्वालिटी और प्रोडक्शन को करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको
1: जी
0: 1 साल 2 साल फायदा मिल सकता है, बाद में वही केमिकल आपके लिए एक उलझन बन सकती है। तो
1: जी
0: आप अपने एक ट्रेडिशनल वे में बागवानी भी करें ताकि इस तरह के जो कीटाणु जीवाणु या उनका मैनेजमेंट है उसमें कुछ, जो आपका एक हैबिटेट मैनेजमेंट बोलते हैं हम,
1: जी
0: कि पेड़ पौधे, और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मार्सोनिना से बचने के लिए कभी भी तौलिए में घास मत उगने
1: हाँ, ये
0: दीजिए।
1: बड़ी बात बोली
0: अगर
1: आपने कि
0: घास आपका उग गया तो वो 20 दिन एडवांस हो जाएगा, जो मैंने 60 दिन का फॉर्मूला आपको बताया है वो
1: जी
0: 50 और 40 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है,
1: जी
0: अंधेरा और एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो
1: बिल्कुल
0: मार्सोनिना का सबसे बड़ा और एक देसी तरीका जो है, आप घास कभी तौलिए में मत उगने दीजिए।
1: जी
0: जैसे ही जमीन की घास पौधों और पत्तियों में छुएंगी आपकी बीमारी स्टार्ट हो जाती है।
1: जी
0: वो एक क्लाइमेटिक फैक्टर है उनका
1: जी
0: भी आपस में, पौधों का और बीमारी का, तो उससे बचिए हमेशा। वीडिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं
1: अच्छा
0: अगर आपने मेहनत को कुछ कम करना है, रिजल्ट्स लेने हैं तो
1: जी
0: खरपतवार को खत्म करने के लिए उसके लिए
1: जी
0: दवाइयां हैं। मैंने इसको प्रभावशाली रूप से इस साल इस्तेमाल किया तो
1: अच्छा
0: मेरी एक तो लेबर बहुत ज्यादा कम हो गई,
1: अच्छा
0: दूसरा उस प्रभाव या उस बीमारी से अभी तक मैंने देखा है उन बगीचों में
1: जी
0: इस बीमारी का कोई अभी प्रकोप नहीं आया। तो
1: जी
0: ये छोटी छोटी बातें हैं जो जुड़ के आपको इस बीमारी से सुरक्षित रखेगी।
1: अच्छा, एक डॉक्टर साहब, जो आपने जो अभी बात की वीडिसाइड्स की, खरपतवार नाशक
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो इसका जो है एक धारणा भी रहती किसानों में कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई दुष्प्रभाव हो जाए, कोई साइड
0: नहीं,
1: इफेक्ट्स। होगा।
0: मैं शैंडल
1: जी
0: जी बागवानों को फिर से कहना चाहूंगा, खरपतवार घास के लिए खराब है।
1: जी
0: जैसे मैं एक नाम लूंगा ग्लाइफोसेट, इसका एक ट्रेड नेम से आता है राउंडअप।
1: जी
0: इसका स्प्रे अगर आप घास के ऊपर 4 या 6 इंच की, जब शुरुआत में घास होती है अप्रैल के महीने में,
1: जी
0: उस पे स्प्रे कीजिए, पेड़ की तरफ खुद खड़े होइए और बाहर की तरफ को स्प्रे कीजिए, एक पॉइंट।
1: जी
0: दूसरा है ये जो खरपतवार नाशक है ये पौधे को जड़ से मारता है।
1: जी
0: आप पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में नहीं इसका कोई प्रभाव होता है, ये 14-15 2 हफ्तों के बाद जड़ में उसका प्रभाव जाता है। तभी कहा है मैंने कि 4 और 6 इंच के ऊपर आपने स्प्रे करना है
1: जी,
0: ताकि उसका प्रभाव जड़ में जाए, फिर ये जड़ को सुखाता है। उसका फायदा ये है कि वो दोबारा से वो खरपतवार उग नहीं सकता तौलिए के नीचे, तो आपको पूरे साल का कंट्रोल उससे मिल जाता है। अगर जो जो केमिकल ऊपर से नीचे को जाएगा वो जड़ को मारेगा,
1: अच्छा,
0: तो आपके ऊपर फॉलिएज पे प्लैश भी अगर पड़ गएगी तो राउंड अप जो ग्लाइफोसेट है इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहता।
1: डॉक्टर साहब ये तो की आपने बड़ी अच्छी बात की, जो बदलते मौसम का जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो है, जैसे दो बीमारियों की बात की आपने, स्कैब की बात की आपने, मार्सोनिना ब्लॉच की बात की आपने, तीसरा आपने खरपतवार हटाने की बात की, इसके अलावा जो ये बदलता मौसम है इसका पेड़ पौधों पर और किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है या असर पड़ रहा है?
0: देखिए शांडिल जी, एक पुरानी कहावत है कि जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में हमारे जमीन का पत्थर भी सूखना नहीं चाहिए, इतनी हमें मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। ये बड़ी प्रभावशाली, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि जुलाई के मौसम में बारिश आ रही है, ये तो हम फील कर रहे हैं कि हम इसमें तंग हो जाते हैं, हमारे भी कन्विंशन अब बड़ी वीक है कि हम एकदम किसी चीज से दुखी हो जाते हैं। जुलाई के मौसम में पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि जुलाई में पत्थर भी सूखना नहीं चाहिए, इतनी बारिश होती रहनी चाहिए। कमर्शियल बागवानी आई है अब जिससे हमारा को थोड़ा सा इससे दुष्प्रभाव या इसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है, पर मॉइस्चर ठीक है। हमारा जंगलों में वृक्षों की भी बात इसमें होगी, जंगलों में बारिश पड़ेगी, कंजर्वेशन होगा, आपके नालू स्ट्रीम्स जितने भी चश्मे चुश्मे हैं सब अलाइव रहते हैं, और ये अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। हमने तो इसको इसलिए बुरा कहा है कि हमारे सेब की फसल, क्योंकि वो मई और जून का जो महीना था वो भी वेट चला गया,
1: ये
0: वो गर्म होना जरूरी था जिसमें सेल डिवीजन होता है, उसको गर्मी चाहिए कम से कम 25 डिग्री से ऊपर लगातार आपको चाहिए सेब की साइज के लिए, बढ़ोतरी के लिए, पर वो नहीं मिला। हम उससे दुखी है कि हमें लगातार बारिश मिल रही है, पर मॉइस्चर बुरी चीज नहीं है, पर उसका एक पीरियड होता है कि सेब की फसल के लिए कब नमी चाहिए, कब आपको थोड़ा ड्राई चाहिए, कब सनशाइन चाहिए। अब वेट वेदर आया, अब आपको माइटीसाइड ही स्प्रे करने पड़ेंगे।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी बदलते मौसम का फलदार पौधों व वृक्षों पर प्रभाव, इस विषय पर। डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बदलते मौसम का फलदार पौधों एवं वृक्षों पर प्रभाव, किसान श्रोताओं अभी आपने इस विषय पर जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुना। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर और उनसे बातचीत कर रहे थे सुरेश चंद। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में समय हो गया है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत। तो योगिता जी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा तिलहनी फसलों के रोग, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा अखरोट की उन्नत खेती।
1: किसान श्रोताओं, इसी के साथ किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष व विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाएगा विपक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है राज्य सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से राष्ट्रीय जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के देश में आलू अनुसंधान व उत्पादन क्षेत्र में योगदान को सराहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 21 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहा है। 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होगी। इस बीच मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज शिमला में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पक्ष व विपक्ष दोनों को मुद्दे उठाने के लिए पूरा समय दिया जाएगा और जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएं, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक रहेगी और जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ सदन में उठाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और मुख्यमंत्री सदन में लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष सदन में प्रदेश हित के सभी मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बदले की भावना से भाजपा विधायकों पर मामले दर्ज कर नई व्यवस्था शुरू की है, जो आज तक हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ है।
3: विपक्ष हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो जनता की आवाज उसको विधानसभा के अंदर, इस माननीय सदन के अंदर हम प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। उसके लिए हम पूरा जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से क्षेत्र से संबंधित हैं प्रतिनिधियों के, चाहे वो लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयत्न हो रहा है, वो तमाम मुद्दे उठेंगे।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग में पहली बार लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ने का फैसला लिया गया है और सरकारी नौकरियों में सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर लीक मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
4: हमारी सरकार में भर्ती का रिकॉर्ड टूट रहा है, भर्तियां की जा रही है, दिन प्रतिदिन की जा रही है, एक भी पेपर लीक कर दिया बता दीजिए। हमारे एजुकेशन के पेपर हुए, हमारे बैच वाइज भर्तियां हुई, हमारे असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के पेपर हुए, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जो राज्य चयन आयोग से चुनकर आएगा वो निश्चित रूप से, अगर वो टेम्परेरी में तो आने वाले भविष्य में वो रेगुलर भी होगा, क्योंकि हम आउटसोर्स को खत्म करना चाहते हैं, खासकर मेडिकल और एजुकेशन में SMC को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए और टीचरों की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं।
2: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने

0: कहा कि विपक्ष मुद्दों के साथ सदन में आए और सरकार तथ्यों के साथ जवाब देगी।
1: देखो, पहला मानसून सत्र है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात कर, जल्दी हम चाहेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आए। जो भी फैक्ट्स लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र के बाद वे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला अगर प्रदेश के हक में आता है तो हिमाचल को हर वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की जनता से राष्ट्रीय जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज लोकभवन शिमला में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना की जाएगी और बर्फ वाले क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 से 31 अगस्त तक डिजिटल स्वगणना की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्यपाल ने लोगों से इस आधिकारिक स्वगणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने व अपने परिवार से संबंधित पूरी और सही जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला का 78वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि लगभग 8 दशकों की अपनी गौरवपूर्ण यात्रा में CPRI ने उत्कृष्ट अनुसंधान, तकनीकी नवाचार व विकासोन्मुखी विस्तार गतिविधियों के माध्यम से देश में आलू अनुसंधान व उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: आलू के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट ने काम किया है और आज जो हम विभिन्न प्रकार की वैरायटीज आलू की देख रहे हैं, आज हम दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश बने हैं। इस दिशा में इतनी लंबी उपलब्धि के लिए, इतनी लंबी जो छलांग आलू के अनुसंधान क्षेत्र में हमने लगाई है, उसमें CPRI शिमला की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: इस दौरान सुरेश कश्यप ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा सांसदों की भूमिका पर सवाल उठाने और उन्हें प्रमाण पत्र देने के बजाय प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और ठप पड़े विकास कार्यों की चिंता करनी चाहिए।
2: मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे सांसद, चाहे लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब भी हमने प्रदेश के हित की बात उनके समक्ष रखी है, लगातार उनका सहयोग हमको मिला है और 3.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और विकास आज प्रदेश में जिस प्रकार से उसके ऊपर विराम लग गया है, तो मुख्यमंत्री को इसकी चिंता करनी चाहिए।
0: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों से राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है और उन्होंने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर में बीते 2 दिनों के दौरान हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित ब्राहलड़ी पंचायत के थान और बाड़ी दून गांव का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर जल्द ही आवश्यक सुरक्षा व मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि क्षतिग्रस्त डंगों की मरम्मत व आवश्यक स्थानों पर पुनर्निर्माण करवाकर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बरसात और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बाड़ी दूग गांव की सड़क का निरीक्षण भी किया। सुनील शर्मा ने अधिकारियों को सड़क को तत्काल चलने योग्य बनाने के लिए आवश्यक कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि कल से ही खड्ड के ऊपर

कार्य शुरू करवाकर सड़क को जल्द से जल्द आवाजाही योग्य बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके, साथ ही स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भूस्खलन प्रभावित स्थानों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

0: भवन में चल रही हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि टौणी देवी से जंगल बैरी तक सड़क की खस्ता हालत से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष व विपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मॉनसून सत्र के दौरान सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाएगा विपक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है राज्य सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से राष्ट्रीय जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के देश में आलू अनुसंधान व उत्पादन क्षेत्र में योगदान को सराहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
2: सीखे युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ ही एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। निदेशालय अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक राजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैच वाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर कुल वेतन मूल्य 12,120 रुपये प्रति माह की दर से भरा जाना है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बारनेट कोर्ट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को 5:30 तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया होना चाहिए। दिनांक 10 सितंबर 2026 के उपरांत प्राप्त आवेदन तथा आवेदक आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक अनुप्रमाणित पत्री सहित उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। पदों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग के लिए सामान्य श्रेणी 15 पद, EWS 5 पद, स्वतंत्रता सेनानियों आश्रितों के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, BPL के लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद। कुल 42 पदों का भरा जाना। रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस पर बातचीत। स्वर एवं संकलन सुशीला शर्मा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनीला शर्मा है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल हमारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल को भी प्रभावित करता है। आज 20 अगस्त है, यानी अक्षय ऊर्जा दिवस। सबसे पहले आप सभी को अक्षय ऊर्जा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में वर्ष 2004 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह दिन केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा केवल हमारी सुविधा नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारे पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। श्रोताओं, सबसे पहले समझते हैं कि अक्षय ऊर्जा आखिर है क्या। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, जो लगातार उपलब्ध रहे। सूरज हमें रोज रोशनी देता है, हवा लगातार बहती है, नदियां और जल हमारे जीवन का आधार हैं। जैविक पदार्थों से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यही वे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हमें अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हमें ऊर्जा चाहिए या नहीं, सवाल यह है हमें ऊर्जा कैसी चाहिए। ऐसी जो आज हमारी जरूरत पूरी करे या ऐसी जो आज भी काम आए और कल भी हमारे बच्चों के लिए बची रहे। श्रोताओं, पिछले कई दशकों में हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का बड़े पैमाने पर दोहन किया है। बिजली बनाने के लिए कोयला, वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल और उद्योगों के लिए विभिन्न जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ प्रदूषण भी बढ़ा। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण बढ़ते हैं। इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और मौसम के बदलते स्वरूप के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं अनियमित वर्षा, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे जैसी परिस्थितियां हमारे लिए चेतावनी हैं। इसके साथ ही पारंपरिक ईंधन सीमित है और उनकी कीमतों तथा आयात पर निर्भरता का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ऐसे ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ें जो स्वच्छ भी हों, टिकाऊ भी हों और भविष्य के लिए सुरक्षित भी हों। और यहीं से शुरू होती है अक्षय ऊर्जा की कहानी। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे विशाल प्राकृतिक स्रोत है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं और आज घरों की छतों से लेकर बड़े सोलर पार्कों तक सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जहां तेज हवाएं चलती हैं, वहां पवन चक्कियों के माध्यम से हवा की गति की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। बहते पानी और नदियों की शक्ति का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। कृषि अवशेष, जैविक कचरा और अन्य जैविक पदार्थों से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इन सभी स्रोतों की खासियत यह है कि ये हमें प्रकृति से के ऐसे संसाधनों से ऊर्जा देते हैं जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, भारत ने भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसी

पहल के माध्यम से भारत ने सौर ऊर्जा और वैश्विक संभावनाओं पर भी जोर दिया है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें दिखाई देती हैं, खेतों में सौर पंप लगाए जा रहे हैं और शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है। ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अक्षय ऊर्जा का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे गांवों और किसानों के जीवन में भी दिखाई दे सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां कभी बिजली की कमी के कारण शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, आज उसी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें हैं, घरों की छतों पर सोलर पैनल हैं और खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सिंचाई में मदद कर रहे हैं। सोलर पंप किसानों को डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है और जब गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वहां नई तकनीक, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसलिए अक्षय ऊर्जा केवल पर्यावरण की बात नहीं है, यह किसान की समृद्धि की बात है, यह ग्रामीण विकास की बात है, यह रोजगार की बात है और यह आत्मनिर्भर भारत की बात है। श्रोताओं, सरकारें और संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब हम स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अब हम बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद करें, दिन में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करें, जरूरत न होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखें, पानी और बिजली को व्यर्थ न बहाएं, जहां संभव हो सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ तकनीकों को अपनाने पर विचार करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं, क्योंकि एक व्यक्ति का छोटा कदम करोड़ों लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बन सकता है। हम अक्सर कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा अगर भविष्य की धरती ही सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा भविष्य कैसा होगा। आज का बच्चा जिस हवा में सांस ले रहा है, जिस पानी को पी रहा है और जिस धरती पर खेल रहा है, वही उसके आने वाले जीवन की नींव है। इसलिए अक्षय ऊर्जा का संदेश केवल सरकारों और उद्योगों के लिए ही नहीं है, हमारे बच्चे भी इसका भागीदार बन सकते हैं। स्कूल में अनावश्यक बिजली बंद करना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, साइकिल का उपयोग करना और दूसरों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ी आदतें बनती हैं। याद रखिए, बदलाव हमेशा किसी बड़े आंदोलन से शुरू नहीं होता, कभी कभी वह एक छोटे से निर्णय से भी शुरू हो सकता है। श्रोताओं, अक्षय ऊर्जा की चर्चा करते समय हम एक बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ऊर्जा का उत्पादन जितना जरूरी है ऊर्जा की बचत भी उतनी ही जरूरी है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा क्यों चल रहा है, अगर दिन में पर्याप्त रोशनी है तो लाइट क्यों जल रही है, अगर किसी उपकरण की जरूरत नहीं है तो वह लगातार चालू क्यों है। एक स्विच बंद करना बहुत छोटा काम लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोग यही छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमारा सरल मंत्र होना चाहिए, ऊर्जा बनाएं भी, ऊर्जा बचाएं भी। अक्षय ऊर्जा केवल तकनीक नहीं, एक सोच है। अक्षय ऊर्जा को

0: सोलर पैनल या पवन चक्कियों तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। यह एक सोच है, ऐसी सोच जिसमें हम प्रकृति से लेते समय यह भी सोचें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। विकास जरूरी है, सड़कें बने, उद्योग लगे, शहर विकसित हों और देश आगे बढ़े, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें पर्यावरण की कीमत न चुकानी पड़े। इसी को हम सतत विकास कहते हैं, अर्थात आज की जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से भी समझौता ना हो। आइए 2050 के भारत की कल्पना करें। अब कुछ क्षण के लिए कल्पना कीजिए वर्ष 2050 की। घर की छतों पर सोलर पैनल हैं, सड़कों पर स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहन हैं, खेतों में सौर ऊर्जा से सिंचाई हो रही है, गांवों में छोटे उद्योग स्वच्छ ऊर्जा से चल रहे हैं, आसमान नीला है, नदियां स्वच्छ हैं, हवा में धुएं की बजाय हरियाली की खुशबू है। और तब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछती है, जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा था तब आपने क्या किया? तब हमारा उत्तर होना चाहिए, हमने समय रहते अपनी आदतें बदली, हमने ऊर्जा बचाई, हमने स्वच्छ ऊर्जा अपनाई और हमने तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश की। यही वह भविष्य है जिसे हमें आज से बनाना है। अब एक कविता के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगी जिसका नाम है ऊर्जा का नया सवेरा। सूरज की किरणें कहती हैं, मुझसे रोशन जग कर लो, मेरी ऊर्जा को अपनाकर जीवन को बेहतर कर लो। हवा चली तो संदेशा लाई, मुझ में भी है शक्ति अपार, मुझको अपनाओ आगे बढ़ो, बदलेगा अपना संसार। नदियों की लहरें गाती हैं, मुझ में ऊर्जा का भंडार, प्रकृति की इस शक्ति से ही सज सकता है कल का संसार। न धुआं हो न प्रदूषण, स्वच्छ रहे अपना आसमान, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से रोशन हो अपना हिंदुस्तान। कोयला तेल है सीमित सारे, कब तक इन भर निर्भर होंगे, सूरज पवन और जल की शक्ति से क्यों ना हम आगे बढ़ेंगे। आज करें हम प्रण ये प्यारा, ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर भारत को आगे ले जाएंगे। घर घर सूरज की रोशनी हो, हर खेत में हरियाली हो, हर गांव और शहर में स्वच्छ ऊर्जा की खुशहाली हो। एक कदम मेरा एक कदम तुम्हारा, मिलकर संवारे भविष्य हमारा। आज बचाएं ऊर्जा और प्रकृति का मान, कल मुस्कुराएगा हमारा हिंदुस्तान। सूरज पवन और जल पुकारे, हम हैं भविष्य के रखवाले। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वच्छ ऊर्जा के दीप जलाएं। तो श्रोताओं, आइए आज केवल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। हम ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम अनावश्यक बिजली बंद करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे, हम स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और जहां संभव होगा अक्षय ऊर्जा को अपनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। जब हम बदलेंगे हमारा परिवार बदलेगा, जब परिवार बदलेगा समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सूरज की किरणों में भविष्य हमारा, हवा की लहरों में सपना हमारा, ऊर्जा बचानी है, धरती सजानी है, आने वाली पीढ़ी की दुनिया बचानी है। आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां ऊर्जा स्वच्छ हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, प्रकृति मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहें, हमें एक सुंदर भविष्य विरासत में मिला है। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान और धैर्य से सुना, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीला शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे अक्षय ऊर्जा दिवस पर यह बातचीत, और स्वर एवं संकलन था सुशीला शर्मा का, प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: रात्रि के 8:16 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं तलत अजीज़ और दिलराज कौर की गाई इस गज़ल के साथ।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं हरजीत हरमन की आवाज में ये पंजाबी गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज व साथियों की मिलीजुली आवाजों में कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से। पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जाँच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन

0: साधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं तीन स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदंबर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री भूमिका चावला पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत।

जी हाँ, आज हम आपको भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सादगी, सहज अभिनय और प्रभावशाली व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री भूमिका चावला की।

राज चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम रचना चावला है। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसीलिए बचपन से ही उन्हें अनुशासन और सादगी का वातावरण मिला। अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1997 में अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। शुरुआत में उन्होंने विज्ञापनों, म्यूजिक वीडियो और टीवी धारावाहिक हिप हिप हुर्रे से काम

शुरू किया। फिल्मी दुनिया में उनकी शुरुआत वर्ष 2000 में तेलुगु फिल्म युवाकुड से हुई। इसके बाद वर्ष 2001 में आई फिल्म खुशी ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद ओका मिसमा और कई सफल फिल्मों में उनके अभिनय को नई पहचान दिलाई। वर्ष 2003 में भूमिका चावला ने सलमान खान के साथ हिंदी फिल्म तेरे नाम से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने निर्जरा भारद्वाज की संवेदनशील भूमिका निभाई, जिससे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा।

भूमिका चावला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्लैमर से अधिक अभिनय को महत्व दिया। उनकी सरल मुस्कान, भावपूर्ण अभिनय और गरिमामय व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान दिलाई। वे आज भी युवा कलाकारों के लिए इस बात की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे भूमिका चावला पर फिल्माई गई कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम की पहली गजल आपके रेडियो सेट्स पर। आवाजें हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल बाजार फिल्म से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं पंकज उदास की गाई ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई ये गजल, जिसे हमने लिया था नाम फिल्म से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह को।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई सी गजल के साथ आज का ये रंगे गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति विनय अवरोल की आवाज़ में ये लोक भजन।

कश्मीरी रामवा साथियों को अभी आप सुन रहे थे। इस लोकगीत में कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं ऋषि कुमार का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रोशन लाल का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सुरेश वर्मा का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत। ये रहा कार्यक्रम का पहला गीत।

चित्रपट संगीत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को रेनू मनकोटिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

मेरा साया इस फिल्म में अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये गीत। ये गीत हमने लिया है मन की आंखें फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं चर्स फिल्म से ये गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: घर की अंबर डोले सबसे बड़ा सच

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यबागची और न्याय

0: अध्यक्ष वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaiji during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr.